ये आकाशवाणी है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का आरंभ सुनेंगे 9:10 पर और भक्ति संगीत वंदना का समय रहेगा 9:20 पर। 9:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत योग गुरु जानकी जी से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। 10:00 आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत।

गीत और गाने नए तराने नए फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 10:30 पर। युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:00 और कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और कार्यक्रम माटी के स्वर का समय रहेगा शाम 6:20 पर। किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00 जिसे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा शाम 7:30 पर। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे एल्बम सॉन्ग्स लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर का समय रहेगा रात्रि 8:30। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:00। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं इस समय सुबह के 9:00 को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। भुवनेश्वर में आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन, निवेश, व्यापारिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। जैसलमेर की पोकरण रेंज में हो रहे भारतीय वायुसेना के ड्रोनाथॉन 2026 में स्वदेशी ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। और प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हुई, उदयपुर संभाग में आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस जनादेश से साफ हो गया है कि जनता डबल इंजन सरकार की सुशासन और विकास नीतियों का पूरा समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार के हर वर्ग की सेवा और खुशहाली के इरादे को मजबूती मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनावों के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत के कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान करवाने के निर्देश दिए हैं। आयोग को इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराबी की शिकायतें मिली थी। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान करवाया जाएगा। 17 सितम्बर को वोटों की गिनती की जाएगी। इस बीच जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका को छोड़कर शेष सभी 305 नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव की लोक सूचना आज जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुबह 7 बजे अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार अध्यक्ष पद के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 और 22 सितंबर को चुनाव होगा। आज और कल अध्यक्ष पदों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। स्थगित अध्यक्षीय चुनाव वाले 4 निकायों में वोटों की गिनती के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव की लोक सूचना जारी कर दी जाएगी। निकाय चुनाव परिणामों पर और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
1: वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत 2 चरणों में हुए इन निकाय चुनावों के परिणामों के साथ ही प्रदेश में शहरी राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। 309 में से 85 निकायों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। 46 निकायों में कांग्रेस बहुमत के साथ बोर्ड बनाने की स्थिति में है। 12 नगर परिषद में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। बाकी 177 निकायों में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है, जिससे बोर्ड गठन में निर्दलियों और अन्य दलों के पार्षदों की अहम भूमिका रहेगी। इन नतीजों में कई प्रमुख राजनीतिक चेहरों को हार का सामना करना पड़ा। जयपुर में पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल और बीकानेर की पूर्व महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित चुनाव हार गईं।
0: भुवनेश्वर में आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में निवेश, व्यापारिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इस मीट का आयोजन किया गया है। उद्योग और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल मीट की अगुवाई करेंगे। राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त मनीषा अरोड़ा भी बीआईपी और रीको के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीट में शामिल होंगी। इसके तहत विभिन्न प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद, सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाएगी। इस दौरान ओडिशा के प्रमुख उद्योग समूहों और व्यावसायिक प्रतिनिधियों के साथ खनन, धातु प्रसंस्करण, हरित ऊर्जा, वस्त्र और परिधान तथा पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में साझेदारी के लिए बैठकें होंगी। गौरतलब है कि प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले साल से 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। इसे पहल के तहत राज्य सरकार विभिन्न शहरों में उद्योग जगत से सतत संपर्क और संवाद को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में गौवंश को लंपी बीमारी से सुरक्षित रखने और इसकी रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। वहीं गौवंश में संक्रमण की रोकथाम के लिए आवागमन को सीमित करने के उद्देश्य से पशु मेलों और हाटों के आयोजन पर रोक लगाई गई है। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने कल जयपुर में पशुधन भवन में इस संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश में लंपी रोग की वर्तमान स्थिति, टीकाकरण और घर घर चलाए जा रहे सर्वेक्षण अभियानों की जानकारी ली। श्री भाले ने अधिकारियों को जिला स्तर पर रोजाना स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पहले ड्रोनोथॉन की जैसलमेर के पोखरण में कल से शुरुआत हुई। मानव रहित युद्धक क्षमताओं को नई धार देने के उद्देश्य से 3 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वायुसेना के उप प्रमुख वाइस एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। ड्रोनोथॉन 2026 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देना है। ड्रोनोथॉन पर और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: 16 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन के तहत पोखरण रेंज में युवा और काउंटर UAS तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में लाइटरिंग म्यूनिशन, लॉजिस्टिक ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, AI आधारित तकनीक, स्वायत्त नेविगेशन और उन्नत पैलोड जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। इन तकनीकों के जरिए निगरानी, लक्ष्य भेदन, लॉजिस्टिक और ड्रोन से उत्पन्न खतरों से निपटने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह आयोजन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बाकी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। इस बीच कल राजधानी जयपुर सहित 15 शहरों में पानी बरसा। झालावाड़ के रायपुर में सबसे ज्यादा 3 इंच बारिश दर्ज की गई। उदयपुर के कोटड़ा में भी करीब 7 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, जालौर और राजसमंद में भी बरसात का दौर चला। बाड़मेर जिले के सेड़वा और धनौ इलाके में कल शाम कुछ देर तेज बारिश हुई। वहीं 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज गर्मी और उमस का असर बना हुआ है।
3: मॉनसून के दौरान कम बारिश के चलते भीषण गर्मी और उमस का दौर बना हुआ है। खेतों में समय पर फसलों को पानी नहीं मिलने के कारण अधिकांश फसलें भी झुलस रही हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से फसलों में हुए खराबे की विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए हैं। बरसात नहीं होने के कारण जिले में सिंचित करने वाली नहरों में भी पानी काफी कम है। ऐसे में सिंचाई विभाग की ओर से भी आगामी सीजन में किसानों से कम पानी की पैदावार वाली फसलों की बिजाई करने की अपील की गई है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
0: भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी इलाके के मनसा गांव में बिजली गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए कोटड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। जयपुर में मोतीडूंगरी गणेश मंदिर से गाजे बाजे और लवाजमे के साथ ये शोभा यात्रा निकलेगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंचेगी। यातायात पुलिस की ओर से शोभा यात्रा को देखते हुए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और बदलाव प्लान जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी, विवादित लेन देन और मनी म्यूल खातों से निपटने के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तैयार किए गए इस मसौदे के तहत साइबर ठगी की जांच के नाम पर पूरे खाते को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज करने के बजाय संदिग्ध राशि को ही रोका जाएगा। बैंकों की ओर से लगाया गया ये अस्थायी डेबिट होल्ड अधिकतम 60 दिनों के लिए वैध होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। भुवनेश्वर में आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन, निवेश, व्यापारिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। जैसलमेर की पोकरण रेंज में हो रहे भारतीय वायुसेना के ड्रोनाथन 2026 में स्वदेशी ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। और प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। उदयपुर संभाग में आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विह्वल हो भरत जो और जैसा चाहें वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए, यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रह्लाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था, अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्रीराम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत वंदना।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401468 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत वंदना एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम इनसे मिले के अंतर्गत योग गुरु जानकी जी से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं जानकी प्रजापति जी, जो कि आयुर्वेदिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लांबा जाटान में योग इंस्ट्रक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जानकी जी ने लगातार 46 मिनट तक हनुमानासन करके और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ये हमारे नागौर के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। जानकी जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो जानकी जी, सबसे पहले थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि योग, आप इंस्ट्रक्टर हैं, तो योग की शिक्षा आपने कहाँ से ली, किस तरह से योग की ओर आपका रुझान हुआ और किस तरह से आप योग से जुड़ी और ये आपने इस तरह इस फील्ड में आप आई?
2: जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि योग 2017 में मैंने योग से एमए किया था, मास्टर डिग्री, लाडनू जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। और जब मैं दूसरों को योग करते हुए देखती तो मेरी जो सेल्फ इनर जो मोटिवेशन है वो होता था कि मैं भी योग करूँ और कुछ अच्छा करूँ इस फील्ड में। तो मैंने भी इस फील्ड में अपना मास्टर डिग्री किया और उसके बाद में 2017 से अभी तक इस फील्ड में कार्यरत हूँ।
1: जी, और आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
2: जी, मैंने 2017 के अंदर चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वामी रामदेव जी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सानिध्य में अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया था, लगातार 46 मिनट तक हनुमान आसन में रहकर।
1: जी, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे मतलब जो आप प्रतिभा हैं वो हमारे नागौर में हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अब हम योग की बात करें तो योग इस समय बहुत पॉपुलर है, हालांकि योग तो बरसों से है और सदियों से, और हम कहें कि हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, भारतीय जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है और हमारे ऋषि मुनि के समय से ये योग चला आ रहा है। लेकिन एक जो आज इसको जो मुकाम मिला है, आज जो इसको ख्याति मिली है, वो बस पहले नहीं थी, योग तो वही है। लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है।
2: जी,
1: तो योग क्या है, अगर हम आपसे जानकारी करना चाहें कि योग क्या है और योग के बारे में सामान्य नियम क्या होते हैं, यानी कि योग कब करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, वो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताएं।
2: जी बिल्कुल, योग एक समग्र अभ्यास है जिसमें शारीरिक आसन, प्राणायाम, ध्यान और नैतिक सिद्धांत शामिल होते हैं। योग की शुरुआत करने की बात करें या योग के कुछ सामान्य नियम की हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक साफ सुथरी और खुली हवादार जगह का चयन करना चाहिए। उसके बाद अपने मन को शांत करें, अपने विचारों को नियंत्रित करें, उन्हें सकारात्मक बनाएं। और जब आप योग करने बैठें तब आपके मन मस्तिष्क में ये भाव आना चाहिए कि आप जो योग, प्राणायाम, ध्यान करने जा रहे हैं वो स्वयं के लिए कर रहे हैं, तभी वह सही मायने में योग होगा। योग हमेशा स्वयं के लिए किया जाने वाला अभ्यास है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर, मन और आत्मा का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। बिना एकाग्रता के योग संभव ही नहीं है।
1: जी, तो योग में आपने बताया कि योग में प्राणायाम और जो योगासन है ये सब सम्मिलित है।
2: जी बिल्कुल, ध्यान है। जी बिल्कुल, ये महर्षि पतंजलि का अष्टांग सूत्र है जिसमें योग योग सूत्र है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें योग के साथ साथ आसन की भी आसन और प्राणायाम की बात की जाती है।
1: जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या भावना है और क्या इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है?
2: जी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आदर्श जीवन शैली अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए और शारीरिक निष्क्रियता को कम करना ताकि शरीर को सक्रिय रखा जा सके। और तो और, दुनिया भर में आम बीमारियों की तरह बढ़ने वाले रोग हैं, जैसे हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, बवासीर है, उन सबको योग के माध्यम से कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये जागरूकता लोगों तक पहुंचाने के लिए हम हर वर्ष नई नई थीम के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं। और इस वर्ष की जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी जो थीम है वो है स्वयं और समाज के लिए योग।
1: जी, तो यानी कि आप अपने स्वयं के लिए, और चूंकि स्वयं स्वस्थ होंगे तो क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा है, हमारा समाज स्वस्थ होगा।
2: जी बिल्कुल,
1: तो ये बहुत ही अच्छी थीम इस बार रखी गई है। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो योग से अगर महिला सशक्तिकरण को जोड़ा जाए तो किस प्रकार से योग महिला सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हो सकता?
2: जी, और जीवन के हर पड़ाव पर योग महिलाओं के लिए अमूल्य है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अगर देखा जाए तो महिलाओं को कई तरह की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। ऐसे में रोजाना सिर्फ 1 घंटा योग करने से महिलाओं को स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है। महिलाएं अक्सर खुद को काम, रिश्तों और सामाजिक दबावों के बीच उलझा हुआ पाती है, इसी बीच अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दरकिनार कर देती है। योग को शामिल करने से शरीर को आराम मिलता है, मानसिक स्पष्टता मिलती है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ योग महिलाओं को शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है, मासिक धर्म संबंधी जो परेशानी होती है उसको कम करता है, जो अनियमित मासिक धर्म होता है उसको नियंत्रित करता है और महिलाओं को आत्मविश्वासी बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है।
1: जी, तो योग की महत्ता मतलब अपरंपार है।
2: जी बिल्कुल,
1: कि योग से हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और कुछ बीमारियों का इलाज भी योग के माध्यम से कर सकते हैं। पहली बात तो अगर हम योग करते रहेंगे तो बीमारी नहीं होंगे, और अगर बीमारी हो भी गई तो हर बीमारी के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के आसन और प्राणायाम हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि अगर हम उस दिशा में जाएं तो किस बीमारी के लिए कौन सा आसन अच्छा रहता है? वैसे तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग इस योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का अंग बनाएं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई तकलीफ हो, शारीरिक तकलीफ हो, मानसिक तकलीफ हो, तो उसमें ये कौन से योग किस तरह की तकलीफ में मददगार सिद्ध हो सकते हैं?
2: जी, देखा जाए तो सभी आसन लाभदायक होते हैं। हर एक आसन का अपना एक फायदा होता है। हर उम्र के साथ में महिलाओं के अंदर या पुरुषों के अंदर कई सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर हम महिलाओं की बबात करें तो महिलाओं को नियमित तौर पर 3 योगाभ्यास जरूर करने चाहिए। ये महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सेहत को बनाते हैं और रोगों से बचाव भी करते हैं। जैसे अगर महिलाओं को कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधों का दर्द रहे तो उनको बालासन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे क्या है कि उनका कमर दर्द और गर्दन दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाए बिना किसी दवाई के। और दूसरा हम बात करें तो सेतु बंधासन करना चाहिए, जिसमें पेट की मांसपेशियों पर असर पड़ता है और बेली फैट भी कम होता है और उनका वजन भी कंट्रोल में रहता है। तीसरा हम बात करें तो भुजंगासन करना चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कि कमर दर्द की शिकायत अमूमन सभी को रहती है, तो उसके लिए भुजंगासन सबसे बेस्ट है। और जिन लोगों को जैसे कि बात करें पुरानी गला खराब रहने की दिक्कत हो, दमे की पुरानी खांसी हो, तो उन सबको ये भुजंगासन करना चाहिए, जिससे उनके फेफड़े गले मजबूत बने रहे।
1: जी, तो जानकी जी, योग के साथ मतलब योग का एक अंग है प्राणायाम।
2: जी,
1: तो योगासन के साथ प्राणायाम भी अगर कुछ करें तो उनसे क्या लाभ हो सकता है और किस तरह के बीमारी में किस तरह का प्राणायाम हमें अपनाना चाहिए?
2: जी, हम बात करें रोगानुसार योग, जिसमें हम रोग के अनुसार योग की बात करते हैं, तो योग तो हमें करना ही है, उसके साथ साथ हम प्राणायाम के द्वारा भी कई सारी बीमारियों को अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें डिप्रेशन की, अगर किसी व्यक्ति को, महिला पुरुष कोई भी हो, अगर डिप्रेशन की शिकायत हो तो उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और अगर किसी को नींद की बीमारी हो, नींद ही नहीं आती हो, और तो उसे भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। और अगर किसी को जैसे बीपी हाई है, बीपी लो है, तो उस कंडीशन में भी, जैसे अगर बीपी हाई है तो चंद्रभेदी प्राणायाम करें, शीतली प्राणायाम करें, ताकि उनका जो बीपी है वो कंट्रोल में आ जाए। और जिनका बीपी लो है उनको सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए, और जिनको कब्जी की शिकायत हो उनको भस्त्रिका, कपालभाति, इन सब का अभ्यास करना चाहिए, ताकि वो अपने रोग से अपने आप को सुरक्षित रख सके।
1: जी जानकी जी, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि योग के साथ, मैं जहां तक समझता हूँ, आहार और विहार का भी एक महत्व है।
2: जी,
1: तो हम योग को अपने जीवन में अपनाएं, उसके साथ आहार विहार भी संतुलित करें और उस पर भी ध्यान दें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: जी, सबसे पहले हम योग की बात करते हैं, तो योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। जैसे हम अपने नित्य क्रम करते हैं सुबह उठते ही, उसी तरह ठीक अपने नित्य क्रमों के साथ एक योग की दैनिक दिनचर्या को ऐड करें। उसके बाद हम आहार की बात करें, तो आहार जो है वो आप 3 बार लेते हैं, तो आप सुबह जब आहार लें तो सूर्य उदय से 2.5 घंटे बाद तक आप अपना आहार कर लें। सुबह का खाना सूर्य उदय के 2.5 घंटे बाद तक कर लें, और उसमें जितना आप हैवी फूड ले सकते हैं वो आप लें, और खाने के जस्ट बाद आप जूस का सेवन कर सकते हैं। और अगर आपको जरूरत पड़े कि आप दोपहर में भी खाना खाना चाहते हैं, तो आप दोपहर के खाने के बाद में छाछ या दही का जो मट्ठा होता है वो बनाकर उसका सेवन करें, और सुबह के भोजन से थोड़ा हल्का भोजन जरूर करें। और अगर आप तीसरी बार भोजन कर रहे हैं शाम को, तो बिल्कुल दलिया खिचड़ी और एकदम हल्का भोजन करें, और भोजन के तुरंत बाद या थोड़ी देर बाद आप दूध का सेवन कर सकते हैं। सुबह के भोजन के साथ आप जूस, दोपहर में छाछ, और शाम को अगर आप दूध लेते हैं तो आपके खाने का डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। आपको खाने डाइजेशन संबंधी कोई भी शिकायत नहीं रहती, आपको कब्ज की और जैसे कि बवासीर वगैरह दूसरे हो रोग, तो उन सब की शिकायत नहीं रहेगी और आप हमेशा निरोग रहेंगे।
1: जी, तो हमारे श्रोताओं से आप अंत में क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि किस प्रकार से योग का पूरा लाभ हम उठाएं और अपने जीवन को निरोग रखें और सुखी रखें?
2: जी बिल्कुल, अंत में मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि इस समय इस बार जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं, उसकी थीम जो है स्वयं व स्वयं के साथ समाज के लिए योग रखी गई है। आचार्य श्री तुलसी जी का एक श्लोक है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, तुलसी अणुवृत्त सिंह नाद सारे जग में पसरेगा। अर्थात एक व्यक्ति अगर अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को अपना ले तो उसके साथ साथ उनके घर परिवार वाले, समाज वाले, राष्ट्र वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम योग की जो मुहिम चली है उसको साकार करने में अपना अहम योगदान दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या को सुधारना है, उसमें योग को ऐड करना है, और फिर धीरे धीरे अपने समाज को, अपने परिवार को ऐड करते जाना है।
1: जी, और इसी प्रकार से वृहद रूप में फिर वो राष्ट्र और पूरे संसार को जो एक वसुधैव कुटुंबकम की हमारी धारणा है उसको चरितार्थ करेगा।
2: जी बिल्कुल, तभी ये जो थीम है वो सही मायने में फलीभूत हो पाएगी।
1: जी, तो जानकी जी आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं के लिए योग के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिले के अंतर्गत योग गुरु जानकी जी से अशोक कुमार गोयल की बातचीत FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:52 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गजलें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गजलें FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म दो रास्ते।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म खेल खेल में आवाजी किशोर कुमार और आशा भोसले की, संगीत आर डी बर्मन का, गीतकार गुलशन बावरा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, संगीत रवि का, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, फिल्म डोली।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया फिल्म डोन से, जिसमें आवाज दी है आशा भोसले ने। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और गीतकार है इंदिवर।

आवाज किशोर कुमार की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म दोस्त।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आराधना से, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, संगीत एच डी बर्मन का, गीतकार आनंद बख्शी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुने गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत चश्मे बद्दूर फिल्म से, आवाजें वाजिद और मीका सिंह की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए। ये प्यारा सा कलाम अभी आप सुन रहे थे, वाजिदा तबस्सुम का था ये कलाम, जगजीत सिंह की आवाज़, और एल्बम इन सर्च से हमने लिया था इसे। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लोकगीत कजरी, हेमंत कुमार की आवाज़ है।

श्रोताओं, कजरी के रंग से आप सराबोर हो रहे हैं, तो चलिए एक और कजरी आपको सुनवा देते हैं। मनोरमा श्रीवास्तव ने गाया है इसे, मिर्जापुर कैला गुलजार हो।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमें।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग।

0: सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। तो लीजिए सुनिए सुरैया की आवाज में मिर्जा गालिब का ये कलाम, जिसे संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद ने और फिल्म का नाम भी है मिर्जा गालिब।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं एक राजस्थानी लोकगीत मारा रंगीलो राजस्थान, और इसे गाया है शोभा गोटू ने, संगीतबद्ध किया है बाबू सिंह ने।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। अब आपको सुनवा रहे हैं कबीर दास जी के कुछ दोहे, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने और इसे संगीतबद्ध भी किया है जगजीत सिंह जी ने ही।

0: जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं मिश्र संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत जिसे गाया है सुजाता चक्रवर्ती ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए एक कव्वाली जिसे गाया आशा भोसले और साथियों ने। साहिर लुधियानवी के हैं बोल और रोशन की है तर्ज। फिल्म का नाम दिल ही तो है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक और कव्वाली के रूप में इस्माइल आजाद कव्वाल और साथियों ने गाया, इसे शेवन रिजवी ने लिखा, बुलोसरी रानी की तर्ज है, फिल्म का नाम अल हिलाल। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने।

इस कवाली के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। रंग

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए सबसे पहले सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना, आशा भोसले और अनवर की आवाजों में। लिखा है इसे निदा फाजली ने।

एक मंजर नया सा है, हंसी लगने लगी हर रह गुजर, हंसी लगने लगी हर रह गुजर आहे।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, आशा भोसले और अनवर की आवाजों में निदा फाजली के बोलते खयाम का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अधूरा आदमी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। हमने लिखा
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

0: नमकीन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, गुलजार के बोल थे, राहुल देवर्मन का संगीत था।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटिले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो
3: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
6: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
7: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
6: हाँ।
7: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
6: हाँ।
7: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
6: हाँ? पता नहीं।
7: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
8: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे दो जासूस फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं
1: नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केशाऊ बांध परियोजना को लेकर आज नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 6 राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इनमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश अपने हिस्से का पानी दिल्ली और राजस्थान को देगा। इसके बदले दिल्ली और राजस्थान हिमाचल के हिस्से की बिजली लागत वहन करेंगे। गौरतलब है कि केशाऊ बांध यमुना की प्रमुख सहायक नदी टोंस पर बनाया जा रहा है। इससे यमुना बेसिन में पानी का बहाव बढ़ेगा, जिससे दिल्ली सहित अन्य राज्यों में पानी का संकट दूर हो सकेगा और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और रुपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड से 2000 रुपए तक के लेन देन या भुगतान पर शुल्क नहीं लगा सकते। सरकारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कोई भी बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रदाता इन माध्यमों से लेन देन करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकते। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। इनमें विशेष रूप से रुपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड और यूपीआई से 2000 रुपए तक के लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछले महीने सरकार ने स्पष्ट किया था कि उपभोक्ताओं से यूपीआई पेमेंट पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नागरिकों से भारत की शाश्वत लोकतांत्रिक भावना को आगे बढ़ाने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को अपनी लोकतांत्रिक परंपरा पर गर्व है। इधर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर में आयोजित भारतीय युवा संसद कार्यक्रम में कहा कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है।
2: लोकतंत्र दिन एक देश या किसी क्षेत्र की संपत्ति नहीं, बल्कि ये जनता की स्वेच्छा से व्यक्त की गई इच्छा पर आधारित एक सार्वभौमिक मूल्य है। सभी लोकतांत्रिक प्राणियों में स्वतंत्रता, सभी लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मानवाधिकार और सम्मान।
1: राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के तहत प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर की गई थी। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा देने के साथ ही संस्कृति को समृद्ध करने और राष्ट्रीय एकता में दूरदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए दूरदर्शन 100% आबादी तक पहुंचने वाला संचार माध्यम है। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस है। भारत रत्न से सम्मानित एम विश्वेश्वरैया की जयंती को इस दिन के रूप में मनाया जाता है। वे भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। हर साल इस दिन इंजीनियरों की भूमिका को सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री विश्वेश्वरैया विलक्षण इंजीनियरिंग प्रतिभा थे। राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी दूरदृष्टि हमेशा नागरिकों को प्रेरित करती रहेगी। संवत्सरी पर्व आज मनाया जा रहा है। जैन धर्म की श्वेतांबर परंपरा में पर्युषण महापर्व के अंतिम दिन संवत्सरी मनाई जाती है। इस अवसर पर उपवास सहित विविध प्रकार के तप किए जाते हैं। इसे क्षमावाणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
6: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

शर्मिली फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था। पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द और लंबी तादाद में जवाब दिया, शशि कपूर और राखी, राखी डबल रोल में। एक श्रोता की टिप्पणी है, मुझे तो चांद बहुत सुकून देता है, शायद इसलिए इसको शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कल शाम तीज पर्व पर अपने हमसफर के साथ दूसरी मंजिल की खिड़की में चांद को निहार रहे थे, तब हम बीते बरस के अनगिनत रंगों में सराबोर होकर गुनगुना रहे थे, खुद पे इतराते हुए, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, मनमीत के साथ बिताए पलों को याद करते, कब रात बीत गई पता ही न चला, सहसा चिड़िया चहकने लगी, कितना सुकून था उन पलों में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि रात के हम सफर थक के घर को चले, फिर चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, ये तो कहो कौन हो तुम, कोई मतवाला आया, जरा सी आहट होती है, आज मदहोश हुआ जाए, बेताब दिल की तमन्ना हो, दिल की तमन्ना थी मस्ती में। क्या बात है भाई, आपने तो बहुत सारे गानों के बोल लिख डाले हैं और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। जरा अब अगली फिल्म के लिए लिखिए कि ये फिल्म आपने कब और कहाँ देखी थी, एक बात। दूसरी बात, कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन, किन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और साथ में गीतकार और संगीतकार का नाम। बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, कोई बात नहीं, जो जवाब आपको सूझे वो दीजिए।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी और जॉय मुखर्जी आशा पारेख पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारे श्रोताओं ने इसका जवाब भी सही दिया और बहुत जल्द जवाब आया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज की इबारत सुरमयी पुकार है, जब चांदनी रात में किसी गीत के वादी संवादी सुर मिलकर सतरंगी आसमान खोलते हैं, यादों की खिड़की खोलकर जब कोई मतवाला मनमीत द्वार पर दस्तक देता है तब रूह का कोना कोना रोशनी से जगमगा उठता है। जीवन के अनगिनत रंग लिए इन गीतों में उड़ने को अनंत खुला है और डूबने को अतल गहराइयां भी। चांदनी रात में गीतों की तान जब सोए कंदीलों को जगा देती हैं तब हम सफर के साथ तारों जड़ी ओढ़नी ओढ़कर कोई प्रियतमा पैरों के झांझर उतार बेताब दिल की तमन्ना लिए किसी योगी की तरह गीत की तरंग में ध्यानस्थ हो जाती हैं। गीतों की मीठी विकल पुकार के साथ पलके नींद की दस्तक पर झपकती हैं और मन को पंख और कल्पना को परवाज देते अमर और मधुर गीतों की अनुगूंज पहरों पहर बनी रहती है। क्या बात है भाई, बहुत ही ललित भाषा में आपने ये इबारत लिखी है और बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि यादों की खिड़की खुली तो जीवन के अनगिनत रंग नजर आए, मनमीत की मीठी यादें मन में हलचल मचाने लगी, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, ओ मेरे हम सफर, बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इन टिप्पणियों के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने आपसे कहा कि आप भी इबारत लिखिए तो आप सभी लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं लिखी है इबारत वो भी लिखे और जो शब्द हमने दिए हैं उन शब्दों को शामिल करते हुए भले ही दो तीन लाइन की इबारत लिखे हम जानना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी के भीतर एक कहानीकार छुपा होता है, एक कवि छुपा होता है जिन्हें बस कहने की जरूरत होती है, तो टटोलिए कहीं आपके भीतर भी कोई कथाकार तो नहीं छुपा। फिलहाल चलिए अगला गाना सुनते हैं, बूझना है आपको फिल्म का नाम। बहुत आसान सवाल है, फिल्म का नाम बूझना है और फटाफट बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर चाहें तो गीतकार का नाम भी बूझ सकते हैं और ये भी बताइएगा कभी आपने गुनगुनाया है इस गाने को

फिल्म थी दी ट्रेन, और यही था हमारा सवाल। श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने बहुत जल्द लिख दिया दी ट्रेन, यहाँ कि मैंने पूछा और उधर उनके जवाब आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से आप फौरन जवाब देते रहिए और हम आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिन्होंने इबारत नहीं लिखी है वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लंबी इबारत लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लव इन टोक्यो के लिए कि ये बड़ा ही बेहतरीन गाना है, इस गीत में किसी प्रिय के आने की खुशी, मन की हल्की सी शरारत और प्रेम की मीठी आहट महसूस होती है, जैसे किसी की दस्तक से अचानक सूना सा मन भी खिल उठे, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, सुनते ही लगता है जैसे कोई चुपके से मन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी हो। गीत की मिठास लता जी की आवाज मिलकर प्रेम की ऐसी हल्की सी आहट देती है जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जा रहा था मंदिर दर्शन करने, सोचा दर्शन के बाद रोज के कामकाज यानी दुकान खोलने के लिए, दर्शन करने के बाद रास्ते में पुराना दोस्त मिल गया, कहने लगा बहुत दिन हुए कोई फिल्म देखने चली, मॉर्निंग शो में राज कपूर जी की फिल्म चल रही है आवारा देखी, लगता है कोई पुरानी बात इन्हें याद आ गई। और जरा बीच में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगला गाना कौन सा होना चाहिए, कहीं आपकी प्लेलिस्ट में यही गाना तो नहीं जो हम सुनवाएंगे, जरा बूझिए ये भी, और अगले दो तीन गाने आप सुझाइए, हम आप जो सुझाएंगे गाना वही गाना आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ इबारत वाले शब्द होने चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मेरा मनमीत जो मुझे अनायास एक चांदनी रात में ट्रेन के सफर में मिल गया, एक रात के लिए मेरा हम सफर, ट्रेन की खिड़की यादों की खिड़की बनी, कितनी अनकही बातें जबान पर आ गईं, और ट्रेन रुकी उसको जाना था मुझे भी, अब के बिछड़े कभी न मिलने को। चलिए अब बारी है गाने की, गाना सुनिए और बूझिए जरा फिर एक बार, हीरो हीरोइन का नाम, साथ में गीतकार का नाम, देखते हैं गीतकार का नाम सही बता पाते हैं आप या नहीं।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने गीतकार का नाम पूछा था, बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, कुछ अधूरी रह गई तमन्नाओं के जख्मों को, नगमे अपनी मरहम से नासूर बनने से रोकती है, एक ऐसा ही गाना है, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार प्यार से प्यार मिला। एक श्रोता ने लिखा है कि खो जाती सुधबुद जब खुलती यादों की है वो खिड़की, इस चांदनी रात की शीतलता अंतर मन को है छूती, वो हम सफर बना मनमीत जब चले हैं बन साथी, जीवन के अनगिनत रंगों की परिभाषा तब है सजती। वही जो आपने इबारत लिखी है उसके जो शब्द मैंने दिए थे उन शब्दों से गीत के बोल नहीं लिखे, जरा वो शब्द टटोलिए और उसके गीत भी लिख डालिए। अभी हमने आपसे पूछा था कि कौन से वो गाने हैं जो आप सुनना चाहते हैं इस समय, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है और कुछ श्रोताओं ने नहीं लिखा है, तो हम जो गाने आप लिख रहे हैं वही गाना हम अगला सुनवाएंगे। उसके बाद कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं जरा फिल्म का नाम जरूर लिखिए। एक श्रोता की टिप्पणी है कि गीत सिर्फ कागज पर लिखे शब्द न रहकर सुरों की सांसें पाते हैं तो वो सीधे रूह में उतर जाते हैं, हिंदी के सुरीले और ललित गीतों का यही तो जादुई असर है, इनमें कहीं किसी की यादों की महक है, कहीं पहले मोहब्बत की मासूमियत है, तो कहीं तन्हाई का सुकून भरा सन्नाटा है, कभी कोई धुन दिल के सुनेपन को गुदगुदा जाती है, तो कभी कोई बंदिश आंखों में गुजरे जमाने की कोई खास तस्वीर सजा देती है। बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी लिख रहे हैं आप, जरा छोटी छोटी टिप्पणी लिखिए ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां शामिल हो सके। अब जरा सुनिए ये गाना, आप सभी की ओर से गाना आया है, बताइए फिल्म का नाम और गीतकार संगीतकार का नाम भी। इबारत में कौन सा शब्द है जिसके जरिए ये गाना सुनवाया जा रहा है?

0: आशिक फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और कुछ श्रोताओं ने बहुत सही जवाब दिया और जल्द जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है और अभी भी कुछ श्रोता लिख रहे हैं। तो आप अब बताइए कि अगला गीत कौन सा लिया जाए, मतलब आपके जहन में कौन सा गीत आ रहा है, हमारी इबारत से शब्द चुनकर बताइएगा और तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर और विविध भारती सुनते सुनते कभी गर्म कभी ठंडी हवाओं के झोंकों से यादों की खिड़की खुल जाती है और मन पुरानी यादों में खो जाता है। याद आती है, वो बहुत सारे प्रोग्राम के नाम लिखे हैं, भूले बिसरे गीत और ऐसे गीत जो जीवन से आज भी जुड़े हैं, जीने का सहारा बनते हैं, जैसे एक दिन बिक जाएगा, नदियां चले चले रे धारा वगैरह वगैरह। भाई भूले बिसरे गीत तो आज भी प्रसारित होता है सुबह 7 बजे, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के गीत न होते तो हम सभी संगीत प्रेमियों श्रोताओं का जीवन नीरस हो जाता। ये बात तो बिल्कुल सच है, हम सभी का जीवन नीरस हो जाता। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ललित गीत केवल शब्द और सुरों का मेल नहीं बल्कि मन की अनकही भावनाओं की आवाज होते हैं। इनमें कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द कह नहीं पाते मगर एक मधुर गीत उन्हें सहज ही दिल तक पहुंचा देता है। और दोस्तों यूं भी होता है कि जब हम एक गीत सुन रहे होते हैं तो मन में बहुत सारे विचारों का झोंका आता है। तो आप बताइए कि आपके मन में इस समय कौन से विचार आ रहे हैं और साथ में आप मन की बात को कब कब सुनते हैं, मतलब मन में जो बातें आपके भीतर आती हैं तो वो कैसे आप मानते हैं। कई बार मन बहुत कुछ कहता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मन में जो बात आती है लगता है इसे किसी तरह से हम पूरा कर लें। तो एक शब्द आज की इबारत में मनमीत है, उससे जुड़े हुए कौन से गाने हैं जरा बताते चलिएगा। फिलहाल प्रेम पुजारी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

दोस्तों, हमने आपसे मनमीत शब्द से गाना पूछा है जिसमें मीत शब्द भी चलेगा, वो गाने आप बताइए। बहुत सारे श्रोता इबारत लिख रहे हैं लेकिन गाने के बोल फिल्म का नाम नहीं लिख रहे हैं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था और हमने आपसे फिल्म का नाम भी पूछा था, गीतकार का नाम भी पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि ललित गीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गायकी होती है। ओपी नैयर, रवि जयदेव, एआर रहमान जैसे महान संगीतकारों ने इन ललित शब्दों को ऐसे मधुर धुनों में पिरोया जिससे गीत केवल सुनने तक सीमित नहीं रह जाते बल्कि दिल में असर करते हैं। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मन का अंतर्द्वंद्व और उसका बोलना मनुष्य के जीवन की एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन गहरी स्थिति है। कहते हैं कि मन कभी कभी बहुत बातें करता है, तो मतलब है कि हमारे भीतर विचारों का एक ऐसा ज्वार उठ रहा है जिसे शांत करना मुश्किल हो रहा है। जब बाहरी दुनिया में हमारे पास बात करने या व्यस्त रहने का कोई साधन नहीं होता तब मन खुद को व्यस्त रखने के लिए खुद से ही बातें करने लगता है। दोस्तों हम तो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कब आप अपने आप से बतियाते हैं, कब अपने मन से बतियाते हैं, कब वो लम्हा कौन सा होता है जब आप खुद से गुफ्तगू करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात में जब हम सफर साथ हो तो सिर्फ सफर रास्तों का नहीं होता, वो यादों का सफर बन जाता है। यादों की खिड़की से झांकता हर बीता पल कभी मुस्कान देता है, कभी आंखें नम कर जाता है। मनमीत के साथ तो जीवन के अनगिनत रंग और भी गहरे हो जाते हैं। और हमने आपसे पूछा था मनमीत शब्द से कौन सा गीत, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने अभिमान फिल्म का गाना लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है और हमारे पास ये गाना है। तो जरा सुनिए ये गाना और बताइए फिल्म का नाम।

श्री कृष्णा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार थे शंभू सेन, और हमारे श्रोताओं ने इसका भी जवाब बिल्कुल सही दिया है और बहुत जल्द जवाब आया है श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नगमों की दुनिया निराली होती है, कुछ नगमे तराने बन दिल की देहरी लांग ताऊ उम्र साथ चलते हैं, कुछ पुरानी अधूरी यादों को दस्तक दे जाती हैं, कुछ तन्हाई के आलम में हम सफर अतीत वर्तमान और आगामी अनंत काल तक एक सुखद एहसास प्रदान करती है। एक श्रोता ने लिखा है, आपके शब्द हमारी कविता, जीने के अनेक ढंग हैं, जीवन के अनगिनत रंग हैं, यादों की खिड़की खोल कर देखो, मेरे मन मीत चांदनी रात थी तुम भी साथ थे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात थी खिड़की से झांकती चांद को निहारती, यादों के पन्ने को पलटने लगती है वो, हम सफर के साथ बिताए उस मीठे पल का एहसास मन को आनंदित कर देती है, जीवन में कई सुनहरे रंग खिल उठते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, आज का सफर आपके साथ अपने खूबसूरत शब्दों की इबारत है, कितने सुंदर और भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक शब्द के भाव और उनको संगीत के सुर में उतारना, हर भाव को जीवंत होते देखना है, जीवन के हर पड़ाव में इस तरह की बातें आम बात बन जाती हैं, कुछ यादें बन जाती हैं, और भी बहुत कुछ लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, और साथ साथ नगमे गाए थे हम सफर मेरे, और गानों के बोल लिख के इन्होंने माला पिरोई है। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं और बूझिए जरा गीतकार संगीतकार का नाम। फिल्म है आखिरी दांव। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है।

आखिरी दांव फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज। गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्द जवाब दिया। मजरूह सुल्तानपुरी मदन मोहन संगीतकार। और एक श्रोता ने लिखा है, वाह वाह वाह जबरदस्त गीत। एक श्रोता ने लिखा, वाह क्या गीत है, तेरी एक नजर की बात है। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं, मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्म पत्नी अगर रूठ जाए तो मुझे फिल्मी गीत गाकर मनाना पड़ता है। और एक श्रोता ने लिखा है, नूतन बुआ जी शेखर जी मजरूह सुल्तानपुरी। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने के लिए लिखा है, वाह वाह। तो अगर आपको लगता है कि अगला गीत भी आप करना चाहते हैं वाह वाह, और आप सभी की पसंद का हो, तो लिख डालिए अगला गीत कौन सा होना चाहिए। हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हम सफर बनकर साथ चलता है, तो यादों की खिड़की से बीते लम्हे भी मुस्कुराने लगते हैं। कभी मनमीत की मीठी यादें दिल को छू जाती हैं, तो कभी हम सफर का साथ जीवन को और खूबसूरत बना देता है। इन्होंने आगे ये भी लिखा है, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलने देना छोड़कर। भाई क्या बात है, गाने तो आप बेहतरीन चुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी चुना है। तो देखिए, आपने भी चुना था क्या ये गाना, जरा फिल्म का नाम बताइए और आवाजें किसकी है बूझिए जरा। बहुत ही आसान सवाल पूछा है, देखते हैं कितनी जल्दी जवाब आता है। अगले गीत की फरमाइश भी आप कर सकते हैं।

पूर्णिमा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में गुलजार के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बूझा, आवाजें भी सही बूझी। मुकेश की आवाज, लता मंगेशकर की आवाज, भला कौन नहीं पहचान सकता है। और अगले गाने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप लिखिए कौन सा गाना हो सकता है। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब आएगा चांदनी रात में, ये वाला गाना, लेकिन और भी गानों के लिए जिक्र किया है श्रोताओं ने, तो हम चाहते हैं कि और जो गाने हैं उसका भी जिक्र कीजिए। ये गाना अब आप अक्सर सुनते रहते हैं विविध भारती से, हम वो गाना सुनवाएंगे जो आप अक्सर नहीं सुनते हैं, तो जरा और गाने भी याद कर लीजिए, शायद आप वाला गाना ही हम आपको सुनवा दें। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है कि वाह, मैं सुरीला सफर का पोस्ट पढ़ने से अनुमान लगा रही थी कि आज अवश्य आप आएंगी, और देखिए आपका आगमन हो गया और आपकी बात कहने का अंदाज एक अलग ही स्तर का मन मोह लेता है, और आप सभी का अंदाज हमारा मन मोह लेता है। आप सभी जिस अंदाज में टिप्पणियां लिखते हैं तो हम भी मोहित हो जाते हैं कि कैसे आप इतनी जल्द जवाब देते हैं, कैसे इतनी सारी इबारत लिख लेते हैं, हमें भी अचरज होता है और अच्छा भी लगता है। यही तो है आपका और विविध भारती का साथ, इसीलिए तो सुरीला है और हमेशा हमेशा के लिए है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हमसफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की खुलती है, ये वाली लाइन मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मन का मीत प्रेमी प्रियतम या साजन हो सकता है, वहीं दूसरी ओर दिलदार दोस्त या मित्र सखा हो सकता है, और बहुत सारे श्रोताओं ने आज इबारत लिखी है और हमने कोशिश की कि सभी की टिप्पणी आज हम शामिल करें। अब सुनिए ये गीत और जरा याद कीजिए, आपने सोचा था कि ये गाना आप सुन सकेंगे, फिल्म का नाम

अगर बता सकते हैं तो बताइए। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आपको ही बताना है। बूझिए फिल्म का नाम। गाने के बोल तो समझ गए होंगे ना अब तक, या अभी नहीं समझ में आया? इंतजार कीजिए, अभी बोल आ ही जाएगा।

फिल्म का नाम दोस्तों हमने आपसे पूछा था, फिल्म थी मुक्ति, मुकेश की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जानकारी बिल्कुल सही दी, हमें लगता है आप सभी की जानकारी बहुत समृद्ध है, इसी तरह से समृद्ध बना रहे। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा वाह वाह ये गाना तो बहुत दिनों बाद सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है वाह सुरीला सफर सुरीली प्रस्तुति, तो हम भी आपसे कह रहे हैं वाह सुरीली टिप्पणियां, और बड़े अच्छे अंदाज में आज आपने टिप्पणी भेजी है, इस बात के लिए सभी का शुक्रिया। अब आज का सुरीला सफर कार्यक्रम समाप्त होता है, कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

दुनिया बहुत तेजी से बदलती चली जा रही है। एक जमाने में इंटरनेट इतना सुलभ नहीं था, आज इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज है कि लोग अपने मोबाइल फोन्स पर तरह तरह का वीडियो कंटेंट भी देख सकते हैं और बहुत ही उन्नत किस्म के वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं और तब सामने आना चाहिए।

लिए युवा पीढ़ी को। हमें अपने परिवार और आस पड़ोस के बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए। मुमकिन है कि हमारे आसपास के बुजुर्ग टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार न हों, या फिर उसे अपनाने से डरते या सकुचाते हों। हमें आगे बढ़कर उन्हें टेक्नोलॉजी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

0: गजब भयारे भाई हाय हाय हाय, चेला गुरु को चूना लगाए, जनता को जो किसी उल्लू बना, अरे दूध वाला दूध में पानी मिलाए।
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए, आदमी भी कैसा साजी हो हाय, मौका मिले तो भगवान भेंट खाए,
0: मौका मिले तो भगवान भेंट खाए। हाय हाय हाय हाय, कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या,
0: मंदिर में जूते।

आम धारणा ये है कि मोबाइल फोन्स अमूमन युवा पीढ़ी या आगे की पीढ़ी के काम के उपकरण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो उम्र के एक ऐसे दौर पर हैं जब उनके पास बहुत सारा खाली समय है, उनके लिए मोबाइल बहुत उपयोगी बन सकते हैं। बच्चे जब दूर देश चले गए हों, दूसरे शहरों में रह रहे हों, तो वीडियो कॉल करके उन्हें देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं। सवाल ये है कि हम अपने बुजुर्गों को ये सब बताएं और रोज धीरज के साथ उन्हें सिखाएं। मुमकिन है कि एक हफ्ते, दो हफ्ते या एक महीने में वो इस टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाएंगे और उसके बाद देखिएगा उनके चेहरे की चमक क्या कहती है।

हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जहां एक तरफ युवा मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत के शिकार होते चले जा रहे हैं, अपना जरूरत से ज्यादा वक्त वो इस स्क्रीन के सामने बिताते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके संयमित इस्तेमाल से सबका भला हो सकता है। आज जहां किताबें बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना मुश्किल बनता जा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए एक ही विषय की बहुत सारी मोटी मोटी किताबें लेकर यहां से वहां जाना मुश्किल हो सकता है, ऐसे में टेक्नोलॉजी काम आती है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में

0: भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे। भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIR News हिंदी और पब्लिक पर @AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
5: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
6: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
5: आर रजिस्टर्ड अंडर द वेरियस EPR फ्रेमवर्क।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

0: यह सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
1: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थिति, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। विदेश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
3: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन

0: आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
1: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है आकाशदीप। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ फिल्म का नाम है अमर ज्योति। इस गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है और धुन बनाई है वसंत देसाई ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रोशन के संगीत निर्देशन में यह था शकील बदायूनी का लिखा गीत, स्वर था मन्ना डे का और फिल्म का नाम था बेदाग।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है चांद और सूरज। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

आइए सुनते हैं खयाम साहब के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। गायिका है सुमन कल्याणपुर और फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था भीगी रात। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी रोशन ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही देर में।
1: हेलो। हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम। फोन करें गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम। फोन करें गीत सुने।

0: की सहेली। कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव का
0: प्यार भरा नमस्कार। कहिए आरती, कैसी हो?
1: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चल रहा है गणेश उत्सव।
0: बिल्कुल, और हम खा रहे हैं मोदक। भाई, घर घर में गणपति बप्पा के आगमन की जो तैयारी हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और लोग अपने घर पर बुला रहे हैं, बाकायदा भोजन करवा रहे हैं और गणपति बप्पा को याद भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और जब अलग अलग घरों में जाओ ना, जो वो शोभा देखने को मिलती है ना, इतनी सुंदर झांकी सी सजा के रखते हैं गणपति बप्पा को, इतना सुंदर सजाया हुआ है, उनके चारों तरफ कहीं फूल हैं तो कहीं अलग अलग तरीके की उन्होंने सजावट करके रखी हुई है, बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम लोग हमें बुला रहे हैं और हम उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि इतने सुंदर तरीके से बप्पा को उन्होंने सजाया है, आसपास गुलाबी फूल, कहीं लाल फूल, कहीं पीले फूलों से सजावट की गई है, और आसपास वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। कई जगह मैंने देखा सितार रखा है, तानपुरा रखा है, इस तरह से भी जो है उस मंदिर को लोगों ने अपने घर में सजाया है।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है देख के, एक एक सकारात्मक अपने अंदर आते हैं ना, एक ऐसी भावना आती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि चलो ये जो त्योहारों के दिन होते हैं ना, जब हम निकलते हैं तो वहाँ भी जो सड़कों पे भी जाइए तो वहाँ पर भी इतना अच्छा सब जगह जगह देखने को मिलता है कि सजावट है, दुकानें भी सजी हुई हैं, हर जगह बहुत अच्छा लगता है।
0: लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, और कहते भी हैं कि जो गणेश जी हैं सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रतीक भी हैं, तो लोगों में जो है उनका बड़ा ही एक महत्व है। हम कितना जैसे ही हमारा कोई काम नहीं बनता, हम तुरंत गणपति बप्पा मोरिया को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हे गणेश देवता, ये जो भी विघ्न बाधाएं आ गई हैं उन्हें आप दूर कर दें और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चला दें, है ना?
1: बिल्कुल,
0: तो हम यही कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए भी कि भाई जो ये खास दिन हम मना रहे हैं, हमारे जो बप्पा हैं हमारे जीवन के सभी विघ्न हर लें और खुशियों के रास्ते हमारे सभी श्रोताओं के, सभी सखियों और सखाओं के जीवन के खोल दें, ताकि हम अपनी जो राह है जहाँ जगह जगह पर हर्डल्स हमें दिखाई देती हैं वो न दिखाई दें और हम अपना रास्ता अच्छे तरीके से तय कर लें।
1: बिल्कुल, मीठा खाते खाते है ना।
0: हाँ बिल्कुल, मोदक के साथ साथ और एक सुरीला गीत भी सुन लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे श्रोता तो जानना चाहेंगे ना, आज आप क्या विषय लेकर आई,
1: कौन से विषय पे हमें बातें करनी है, ये भी जानना जरूरी है। तो आज हम लेके आए हैं जो विषय है वो है खत्म होती जा रही सहनशीलता।
0: ओहो,
1: किस तरीके से हम अपनी सहनशीलता को खत्म करते जा रहे हैं और हम उतावले हो रहे हैं हर चीज के लिए, तो इसके बारे में भी
0: हम तुरंत किसी चीज को पाना चाहते हैं ना। पहले सहन शक्ति होती थी हमारे अंदर, और अभी ये हो गया है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया है तो हम तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। पहले हम पहले सोचते थे, गुनते थे, मनन करते थे कि हमें इसका जवाब देना भी है कि नहीं देना है, है ना, शांत रहते थे, लेकिन अभी तुरंत जवाब देना सीख गए हैं
1: जी। तो और हम सिर्फ अभी मुंह से ही जवाब नहीं देते, हाथ पैर भी चलने लगते हैं।
0: हाँ, तो ये तो और भी गलत तरीका है। तो ये जो आपने कहा कि सहन शक्ति खत्म हो गई, इस पर वाकई हम चर्चा करेंगे और अपने श्रोताओं से भी चाहेंगे कि वो बताएं कि उनके जीवन में कितनी सहन शक्ति बची है।
1: बिल्कुल, वो अपने विचार हम हमारे साथ साझा करें। साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत सुमिता घोष की, जो कि रंग सूत्र की संस्थापक हैं।
0: क्या बात है।
1: और आज हम मुहावरों की दुनिया में लेकर आए हैं कान भरना।
0: बहुत से लोगों का शौक होता है ये, आपको पता है ना कि लोग एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। घरों में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए,
1: हर जगह
0: आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए किसी दूसरे का कान भर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और सामने वाले का कान भी कच्चा होता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ में जुड़ा हुआ कि आपके कोई कान भर रहा है तो आप कान के कच्चे हैं, इसका मतलब आप जो बातों में आ रहे हैं
0: और बातों में आ जाते हैं और उसे सच्चा मान लेते हैं।
1: बिल्कुल, और आज हम बात करने जा रहे हैं हल्की फुल्की बातों के अंतर्गत खाने की अतरंगी आदतों की।
0: जैसे
1: जैसे कि किसी किसी को शौक होता है ना कि जलेबी को सॉस में डुबो के खाने का।
0: बिल्कुल
1: अजीब अजीब, सच में मैंने देखा है, शौक होते हैं लोगों के। और इस तरीके की बातों पे हम बात करें, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं, जो सखियां हैं, जो सखा हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरीके की कोई आदत है कि उनको मीठे के साथ नमकीन को मिक्स करके खाना अच्छा लगता है, या कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बताया जलेबी को सॉस में डुबा के खाना गाना अच्छा लगता है।
0: अच्छा।
1: तो इस तरीके की अगर आदतें हैं आपके अंदर या आपके किसी जानने वाले के अंदर तो आप हमारे साथ उसको साझा करिए।
0: हाँ बिल्कुल, एक अलग किस्म की ये आदतें हैं जो हर एक में नहीं होती और हर एक इस तरह का स्वाद लेना पसंद भी नहीं करता है। तो आप बताइएगा कि आपके घर में आप कोई व्यंजन बनाते हैं या किसी के घर जाते हैं या आपके घर में बच्चे ऐसा करते हो कि किसी चीज के साथ और कोई ऐसी चीज
1: जो बहुत अजीब
0: होती, कॉम्बिनेशन ही नहीं है उस चीज का, है ना। तो इस तरह की बातें हम चाहेंगे आज बहुत अच्छी तरीके से हम श्रोता के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और अभी गीत सुन लें।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ये गीत तो बहुत ही सुंदर था और बहुत कम सुनने में आया है ये गीत,
1: बहुत
0: है ना?
1: प्यारा लगता है ना।
0: हाँ। अच्छा एक बात बताओ आरती, अगर तुम्हारे घर पर किसी जरूरी फैसले पर सबकी राय ली जाए तो क्या मानती हो तुम, वो लोकतंत्र है?
1: बिल्कुल लोकतंत्र माना जाएगा उस
0: माना
1: चीज़
0: जाएगा।
1: मेरी नजर में तो माना जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब बात छोटी सी है लेकिन लोकतंत्र की जो भावना है हम समझते हैं यहीं से शुरू हो जाती है,
1: जी,
0: है ना?
1: जी।
0: सबकी बात सुनी जाए और फैसले में लोगों की भागीदारी भी हो, और यही वजह है कि हर साल हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं होता, ये समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी, संवाद और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल, इसको एक उदाहरण देके समझा सकते हैं लोकतंत्र को।
0: हाँ?
1: बहुत छोटा सा उदाहरण है।
0: हाँ?
1: आप शायद हंस भी पड़े इस पर कि सोचिए कक्षा में पिकनिक के लिए दो जगहों के नाम सामने आए। एक बच्चा बोला मुझे पहली जगह पसंद है और दूसरा बोला मुझे तो दूसरी जगह पसंद है।
0: ठीक है,
1: अगर शिक्षक जो है जो पढ़ा रहा है वो बिना किसी की बात सुने खुद ही फैसला दे दे कि तो ये भागीदारी वाली प्रक्रिया तो नहीं कही जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: कि नहीं ना हमने उनकी सुनी ना उनकी सुनी, हमने तो अपना फैसला लागू कर दिया।
0: हाँ।
1: तो लेकिन अगर सबकी राय सुनी जाए और विकल्पों पर चर्चा हो और फिर उचित तरीके से निर्णय लिया जाए तो ये लोकतांत्रिक सोच का एक छोटा सा उदाहरण है। यानी सरल शब्दों में कहें तो मेरी आवाज महत्वपूर्ण है लेकिन आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: ये सबसे बड़ी बात है ना,
1: जी,
0: कि हमारे विचार तो हमने थोप दिए किसी पर लेकिन सामने वाले के विचारों को देखा भी नहीं, लेकिन अगर आपने दोनों विचारों का सम्मान किया यही लोकतंत्र है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: और मान लीजिए घर में आज तय होना है कि रात के खाने में क्या बनेगा, है ना, होता है ना भाई आज क्या बनाना है, तो पापा कहते हैं भाई आज तो पूरी सब्जी खाने का मन है।
1: हाँ।
0: और बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं हमें तो पिज्जा खाना है, हमें तो बर्गर खाना है।
1: हाँ।
0: है ना? लेकिन मम्मी कहती है कि आज तो खिचड़ी बनेगी,
1: हो गया फैसला।
0: ऐसे में क्या होता है कि वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और असंतोष घर में
1: प्राप्त
0: हो जाता है, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो
1: जी, और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमत होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दें। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें नागरिक केवल दर्शक नहीं होते बल्कि व्यवस्था में भागीदार होते हैं। यानी कि मम्मी को सबकी बात सुननी चाहिए। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं और समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही हमेशा ये भी याद रखना चाहिए आरती हमें कि अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं जिन्हें निभाते हुए लोकतंत्र का सम्मान किया जा सकता है। और अब मैं भी यहाँ सम्मान करूंगी लोकतंत्र का, आपसे पूछती हूँ कि एक अंतराल ले लें।
1: बिल्कुल, लिया जाए।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से हम स्वागत करते हैं
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, हमारे सखियों और सखाओं ने,
1: हमारे जो सखियां हैं, जो हमारे सखा लोग हैं, सभी कुछ बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। तो एक हमारे जो जो श्रोता है वो लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए बनाई जाती है और लोकतंत्र का यही एक मौलिक पहलू भी है। ऐसे में लोकतंत्र के परिवर्धन और संवर्धन का ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस खास मायने रखता है और इसीलिए इसे मनाया भी जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और अपनी बात कहने के अधिकार का सम्मान भी है। सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाते हैं।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत कर दी थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों और स्थिति की समीक्षा करना और इसे मजबूत करना है। यानी जब हर आवाज मायने रखती है तो लोकतंत्र बेहतर परिणाम देता है और ये खास आज के दिन मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया भी जाता है।
1: जी, तो इस समय लोकतंत्र क्या कहता है,
0: यही कि गीत सुन लिया जाए।
1: जी, बिल्कुल।

0: तो आरती, हमारी बहुत सारी सखियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने ख्वाब को हकीकत का रंग भी दिया है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और उसी में एक नाम है सुमिता घोष का।
1: जी, तो कहते हैं ना कि किसी के पास हुनर होना बड़ी बात है, लेकिन उस हुनर को सही पहचान और सही अवसर मिलना उससे भी बड़ी बात है। हमारे देश की गांवों में सदियों से महिलाएं खूबसूरत कढ़ाई करती आई हैं, हाथ करके एक पर बुनाई करती आई हैं, कढ़ाई करती आई हैं, और अपनी पारंपरिक कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती आई हैं।
0: बिल्कुल आरती, सही कहा तुमने। लेकिन एक सवाल ये कि अक्सर इतने सुंदर काम को देखकर भी मन में आता है कि क्या इन हुनरमंद हाथों को उनके हुनर का उचित मूल्य मिल सकता है। बस इसी सवाल को अपने काम का आधार बनाया हमारी आज की सखी विशेष यानी सुमिता घोष ने।
1: जी, और सुमिता घोष का जन्म हुआ कोलकाता में और उन्होंने मुंबई से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर डिग्री की उन्होंने हासिल की। और सुमिता का असली विश्वविद्यालय था उनका अपना देश, यानी कि अपना ग्रामीण भारत।
0: कितनी बड़ी बात है ना।
1: जी,
0: और एक लंबे समय तक सुमिता ने ग्रामीण राजस्थान में एक ट्रस्ट के साथ काम किया और उनका काम ग्रामीण विकास, समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ काम था, है ना।
1: और इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, सच में जो ग्रामीण भारत को चुनते हैं, सच में वो कुछ कर गुजरने के लिए मन में पहले ही सोच के रखते,
0: ठान लेते हैं। मैं बताऊं, मैं एक ऐसी महिला से मिली थी जो एनएसडीएन थी और उन्होंने नागालैंड जाकर वहां के जो लोग थे उनको चुना कि मैं उनको एक्टिंग सिखाऊंगी।
1: अरे वाह।
0: जो वहां का जो ग्रामीण तबका था, जो अशिक्षित था, वहां जाकर उन्होंने एनएसडी पास आउट करने के बाद वहां स्थान चुना और वहां जाकर वो आज भी काम कर रही
1: है। बहुत बड़ी बात।
0: कितनी बड़ी बात है, जबकि हम एनएसडी से निकलकर सीधा मुंबई की शरण में आते हैं, है ना, और हम फिल्मों की तरफ आते हैं, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना जहाँ कोई जाना नहीं चाहता और उन लोगों की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना और वहां लोगों को कलाकारी से जोड़ा। तो ऐसे ही सुमिता घोष हैं जो कि वो सोच रही थी कि कैसी संस्थाएं होनी चाहिए जो समाज में जो असमानताएं हैं और अन्याय है उसे कम करने में हमारी मदद कर सकती
1: है। बिल्कुल। और ये सब सोचते हुए उनके मन में एक विचार आकार लेने लगा था कि गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना बहुत जरूरी है। किस तरह कारीगर और ग्राहक के बीच सीधा रिश्ता बनाया जाए, परंपरा को आधुनिक बाजार से कैसे जोड़ा जाए, यही विचार आगे चलकर रंग सूत्र बना। लेकिन विचार को हकीकत में बदलना आसान भी नहीं था।
0: बिल्कुल, इतना आसान तो नहीं होता है। जब भी कोई व्यवसाय शुरू करना हो तो सबसे पहले उसकी जो जरूरी चीज है वो क्या है, पैसा।
1: बिल्कुल,
0: पूंजी, है ना। और सुमिता घोष को भी पूंजी की जरूरत थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी जो थी दान देने वाली संस्थाएं, और उन्हें इसलिए फंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि रंगसूत्र एक चैरिटी नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में काम करने वाला सामाजिक उद्यम था।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बैंक भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पर्याप्त व्यवसायिक अनुभव और ऋण के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं थी उनके पास। सुमिता के मन में यही बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक ख्याल आया, अगर इन्हीं कारीगरों के हुनर से ये संस्था बनेगी तो क्यों ना वो इसके मालिक भी बन जाए।
0: कितनी बड़ी बात उनके दिमाग में आई, जो कि हर एक के दिमाग में नहीं आती,
1: क्योंकि अपना तो सब सोचते हैं कि हम अपना व्यवसाय खड़ा कर लें, लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनको, उनके लिए सोचकर इतनी बड़ी बात सोचना बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल, और कि वही मालिक भी बने। हम क्या सोचते हैं, काम तो हम शुरू कर दें, मालिक भी हम बन जाए।
1: जी,
0: है ना, हमारे विचार में यही रहता है ना ज्यादातर कि मालिकाना हक जो है हम पाना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान के लगभग 1000 कारीगरों ने आगे बढ़कर कंपनी में 1,000 रुपए का निवेश किया, यानी शुरुआत हुई कारीगरों की अपनी भागीदारी से। और ये केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं था बल्कि एक सोच थी कि कारीगर सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यवसाय का भागीदार भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक बहुत अच्छी शुरुआत करी। और यही रंगसूत्र की सबसे खास पहचान बनी। रंगसूत्र की यात्रा पहले 2004 में एक उत्पादक कंपनी के रूप में शुरू हुई और फिर 2006 को क्राफ्ट्स इंडिया के रूप में पंजीकृत हुई। और रंगसूत्र का उद्देश्य था कि ग्रामीण कारीगरों को नियमित काम और टिकाऊ आजीविका से जोड़ना, साथ ही उनके पारंपरिक कौशल को भारत और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना।
0: सबसे बड़ी बात ये थी। और यहाँ बात केवल आरती हस्तशिल्प बेचने की नहीं थी, बात थी हुनर, बाजार, सम्मान और स्वामित्व, इन सभी को एक साथ लाने की। और रंगसूत्र से जुड़े कारीगरों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी, तो नीति आयोग के अनुसार रंगसूत्र में 2000 से अधिक कारीगर शेयर होल्डर रहे और लगभग 80% कारीगर महिलाएं हैं। तो कारीगरों की भूमिका सह मालिक, सह निर्माता, प्रबंधक और बोर्ड सदस्य के रूप में भी वहां पर रही है।
1: बिल्कुल, और यानी जो महिला है उनके हाथ में सिर्फ सुई और धागा नहीं आया बल्कि साथ में उनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत भी आई।
0: बिल्कुल,
1: और सुमिता घोष के रंगसूत्र पर लिखे एक लेख में एक महिला कारीगर के अनुभव को बताया गया है कि कंपनी के शेयर उसके नाम की उन संपत्तियों में शामिल थे जिन पर उसका अपना अधिकार था। अपनी कमाई से उसके पास अपने बैंक खाते और खर्च के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आई थी।
0: और यही वो बदलाव था जिसे सुमिता घोष सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती थी। रंगसूत्र ने पारंपरिक कढ़ाई, हथकरघा और अन्य हस्तशिल्प कौशल को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने का काम किया और इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगर केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े ग्राहकों और वैश्विक बाजारों तक इनकी पहुंच बन सके।
1: बिल्कुल, और रंगसूत्र ने बड़े बाजार भागीदारों के साथ में काम किया है। इस तरह एक गांव में बैठा कारीगर अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पाद को दुनिया के दूसरे हिस्से के ग्राहक तक पहुंचते हुए देख सकता था। सुमिता घोष के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2016 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े उनके कामों के लिए मिला था।
0: बिल्कुल सही कहा। तो एक तरफ गांव की कच्ची गलियां, दूसरी तरफ दुनिया का बड़ा बाजार, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की जो कोशिश, या यूं कहें बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ा काम सुमिता घोष ने किया, उस पुल का नाम क्या है?
1: रंगसूत्र।
0: और सुमिता घोष ने साबित किया कि अगर किसी महिला के हाथ में हुनर है तो उसे केवल काम नहीं साथ में काम का उचित मूल्य, अपनी पहचान और अपने फैसलों की ताकत भी मिलनी चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर आप किसी हुनर, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको तराशना बहुत जरूरी है ना, और उसको तराश के जब आप अपने लिए उसको उपयोग करते हैं ना, तो अपना ही नहीं साथ में अपने परिवार का, अपने साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उन सबका भी भला करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और ग्रामीण तबकों में क्या होता है आरती, महिलाएं एक साथ समूह में इकट्ठी होकर वो लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, शुरू करती हैं छोटे छोटे, और उनमें अलग अलग चीजें बनाती हैं, फिर वो सब मिलकर अपना घर भी चलाती हैं। तो इस तरह के भी जो है कुटीर उद्योग गांवों की महिलाएं खासतौर से, लेकिन उनको एक बड़ा व्यक्ति ऐसा मिल जाए, बड़ी सोच वाला, जो उन सबको इकट्ठा करके इस तरह का एक बहुत बड़ा
1: एक मालिकाना हक भी दे दे साथ में।
0: हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमने देखी है जो 70-80 महिलाओं का समूह इकट्ठा करके गृह उद्योग धंधे शुरू करती है और वो वहां पर सभी को जो है अपने अपने तरीके से मालिकाना हक भी मिल जाता है।
1: और ये काम करने से उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है ना कि हम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें शहर जाना पड़े कुछ काम करने के लिए।
0: वो ग्रामीण तबके में रहकर
1: हम अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं
0: और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत हो।
1: जी,
0: और अभी क्या जरूरी है?
1: अंतराल।

0: सेल्युलॉइड के सितारे। श्रोताओ, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: कमलजीत जी नमस्ते।
2: नमस्कार,
1: आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं
2: जी।
1: अच्छा, आज के माहौल में जब टीवी का बोलबाला है और आप करीब हर चैनल पर नजर आते हैं, तो कैसा लगता है ये सब देखकर?
2: बड़ा अच्छा लगता है सविता जी, क्योंकि कलाकार अगर काम अच्छा कर रहा हो और वो ऑडियंस उसे सराहती है तो कलाकार का उत्साह बढ़ता है, वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो ये सब अच्छा लगता है कलाकार को।
1: अच्छा, आप तो अभी टीवी के स्टार बन गए, फिल्मों में नाम तो आपका बहुत हुआ बतौर हीरो, लेकिन कभी ये सोचकर मलाल नहीं होता कि मैं स्टार नहीं बन सका?
2: देखिए, सिनेमा से मुझे बहुत इश्क है, अब भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, तो सिनेमा से तो मुझे बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन वहाँ न बन सका इसका मलाल मुझे नहीं है। अब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी पसंद के रोल अगर मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कोई भी रोल तो मैं करूंगा।
1: तो इसी बात पे गाना हो जाए आपकी पसंद का?
2: जरूर।
1: कौन सा गाना सबसे पहले सुनाना चाहेंगे आप?
2: जिन दिनों जब मैं फिल्में किया करता था
1: जी,
2: तो उस जमाने की एक फिल्म का जो मेरी सबसे पहली ऑलमोस्ट फिल्म थी शंकर हुसैन, उसमें एक गाना था बड़ा खूबसूरत, लता जी ने गाया था, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियां धड़कती हैं।

0: आपने संघर्ष तो खूब किया
1: जी
0: और बहुत समय लगा, मुझे लगता है पहचान बनाने में। तो ये पहचान आपकी कैसे बनी?
1: ओके, कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है। कुछ लोग बुनियाद काफी देर तक बनाते रहते हैं, तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफी टाइम ले लिया। और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिशिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया।
0: मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था,
1: जी उसी
0: उसी
1: हाँ
0: से बात बनी
1: जी
0: ना?
1: जी जी उससे काफी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद।
0: अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चलन है? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह, तो ये कॉम्पिटिशन को आप कैसे फेस करते हैं?
1: ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है, मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं आपको काम मिलता रहता है, सीरियल आपके चलते हैं या चल रहे हैं, आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं,
0: जी
1: आपके पास अगर पहले दो मरीज आए और वो आपके हाथों मरे जाए तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले दो तीन सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी डॉक्टर वाला हिसाब होता है।
0: अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत किए।
1: जी
0: शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाल ही में की,
1: जी माचिस हाल में
0: एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए। तो फिल्म और
1: ये आप
0: सीरियल
1: शिकायत कर रही हैं, ये बता रही हैं, मुझे लगता है समझ नहीं आ
0: क्योंकि मैं तो रोज ही जब टीवी
1: रहा।
0: ऑन करती हूँ तो आप ही आप दिखाई
1: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो
0: देते
1: असल
0: हैं।
1: में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है, पर मैं ज्यादा काम लेता नहीं हूं, उतना ही लेता हूं जितना मैं अच्छी तरह निभा सकूं जिसे।
0: अच्छा, एनीवे
1: हाँ तो क्या कह रही थी आप?
0: फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है? जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है क्या?
1: नहीं, अभिनय में फर्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो,

0: भी थोड़ा सा वहां पे एक दो सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर
1: लाउड
0: में।
1: होते
0: जी
1: हैं
0: हाँ, थिएटर में,
1: जी।
0: सिनेमा में, क्योंकि एक एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ, टेलीविजन और सिनेमा में एक्टिंग में कोई फर्क नहीं। हाँ, डायरेक्शनल टेक्निक्स में फर्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविजन का है वो क्लोजर मीडियम है शॉट्स का, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहां निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता
1: ये फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना,
0: है। क्यों क्यों हम
1: कैरेक्टराइजेशन
0: लोग टेलीविजन में
1: करना
0: नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविजन में ज्यादा ऑथेंटिसिटी
1: ज्यादा
0: दिखाते
1: होते
0: हैं।
1: हैं। यही बात तो
0: बिल्कुल,
1: उगलवाना चाह रही थी
0: गुस्सा आ गया मुझे, गुस्सा दिलवा के है।
1: अच्छा, जब शुरू शुरू में सीरियल बनने शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर इसे, माफ कीजिए, छूत की बीमारी समझते थे। कहते थे कि नहीं, छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं। क्या ख्यालात हैं इस बारे में?
0: देखिए, मेरे ख्यालात जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं। मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूं, बट टेलीविजन का शुक्रगुजार हूं कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया। लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविजन पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविजन जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहां पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शन है। आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है, इट इज अ ग्रेट मैजिक, इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट, आई थिंक सिनेमा इज। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविजन में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है। लेकिन क्योंकि सर्वाइवल, हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविजन में है, जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविजन में नहीं आना चाहते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी बात पे, इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए
0: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं।
1: जो आपको पसंद हो।
0: गालिब की एक गजल है, मुझे बड़ी पसंद है, और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
1: वाह वाह वाह।

0: कमल जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे, मतलब प्रवेश करते थे, और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली?
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं, उसी में आ रहे हैं। सीधी बात है।
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम कर रहे हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जो जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई वही बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
0: मतलब रोजी रोटी का सवाल है वहां।
1: नहीं, रोजी रोटी के नहीं, भाई वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात, अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है।
0: अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है। आपके क्या विचार हैं?
1: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है।
0: बिजनेस,
1: जी हाँ। तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा? तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
0: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है?
1: नहीं, हाँ, तो ऑब्वियसली जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा। जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी? पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप, पॉपुलर हर जो चीज है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे ही आप लेके बनाएंगे ना।
0: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में?
1: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था इनिशियली।
0: फिल्मों में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता।
1: एक तो
0: कहाँ तो आप जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं, तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी मिले।
1: देखिए, अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब आदमी यहाँ पे ट्रेन में बंबई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें, भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ये कोई कहता है?
0: कोई नहीं कहेगा।
1: तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को एक साल दे, दो साल दे, ढाई साल दे, तीन साल दे, या फिर बाप बहुत रईस हो, समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा है स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूं और मैं कितना मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूं कि मैं कहूं कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
0: कमल जी, जिंदगी का सफर तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहे, कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है?
1: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं। तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को यानी एक्टर्स को, कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं और हमें काम ही ना मिले, क्योंकि हम तो एक ही

0: हम जानते हैं ये, और यही नहीं मिल, यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? हमने माना दिल्ली में रहे मगर खाएंगे क्या?
1: अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है, तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलेसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
0: नहीं नहीं, क्यों, मैं जेलेसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है तो वो इसका मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सेक्रीफाइस, और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सेक्रीफाइस करने की वो है
1: ताकत,
0: इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया। शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ, तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं, तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर हैं तो घर नहीं है। उसके उसके जहन में घर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे कुछ, मतलब जहाँ पे सब सही रहना चाहिए।
1: ये तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस
0: नहीं
1: पति के लिए?
0: नहीं नहीं, वो जब बहुत छोटी थी मेरी वाइफ अनुराधा, तो उन जब बच्ची थी खुद, तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी। तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज अ होम बर्ड।
1: तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना,
0: सुंदर सी बीवी के लिए।
1: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए कितनी।
0: तो चलिए बीवी की बात चलिए तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं।
1: कौन सी फिल्म का?
0: उत्सव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन क्यों महका।

0: आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
1: जी आप हम क्योंकि मैं हूं सहारनपुर का हूं,
0: जी
1: और मेरा ना कोई चचा ना कोई ताया ना कोई अंकल ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बम्बई जाकर एक्टर बनूं। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं, तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस में जाऊं, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था, जो दोस्त थे हमारे और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, उन वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फैन था, देव साहब का फैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फैन होते थे और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ दिले देव साहब के फैन होते थे, बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था।
0: तो कोई फिल्म देखी थी, उसका असर हुआ, कुछ तो बात हुई होगी, या कोई
1: नहीं,
0: ड्रामा किया, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ जहन पर, दिमाग पर?
1: मुझे बेसिकली क्या सबसे जो जहन में प्राइम चीज थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी जिंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे एनडीए का आया, डफरिन का आया, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था, और बल्कि मैं एनडीए में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लौंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ समझा, तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया, और
0: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना वहां
1: नहीं
0: पे?
1: स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था,
0: नहीं,
1: नहीं इंस्टीट्यूट में
0: अच्छा।
1: स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हम सेलेक्ट हो गए।
0: अच्छा, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा है आपने?
1: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को ये कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीजें इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों को, कुछ को एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं, और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, आई थिंक इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
0: अच्छा, आजकल आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना? तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहता है। तो आपकी क्या
1: ये
0: ख्याल है इस बारे में?
1: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊपर
0: ऊंची है
1: ऊंचे
0: ना?
1: होंगे, क्योंकि
0: हाँ।
1: और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था,
0: जी
1: उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था।
0: ओ
1: तो देखिए एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन तो दो तीन ही आएंगे, पांच दो तीन थोड़े आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है एक 60वां भी होगा वहां, तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नंबर 60 आया, अबे तेरा नंबर 60 यहां आया, कहीं कोई और चीज जिनमें ट्राई करेगा वहां नंबर 1 हो जाएगा। तो अपने अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए, ये
0: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, चप्पा चप्पा कोशिश करते
1: बिल्कुल,
0: रहना
1: बिल्कुल,
0: चाहिए
1: बिल्कुल,
0: इसी बात पे आपको आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना माचिस फिल्म
1: माचिस,
0: में
1: माचिस,
0: हो जाए
1: बिल्कुल हो जाए,
0: जलाइए चप्पा चप्पा चरखा
1: जलाइए माचिस
0: तो सुनते हैं वही गाना चप्पा चप्पा चरखा चले
1: जी।

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से, तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तो अपने बच्चों के साथ और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज़्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हमको, हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ। एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशंस उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए गाना?
1: अब बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे, तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था, मेरा छोटा बेटा जो था। तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है। तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वी यूज टू एंजॉय दैट नंबर। तो वो सुनवा देते हैं
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं, रूप सुहाना लगता है।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन मुझे, आप लाइए
0: क्योंकि
1: प्रोड्यूसर तो मैं ये भी
0: 20
1: कर
0: 25 साल हो गए आपको
1: डालूंगा।
0: लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभी नहीं ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की
1: कभी
0: बागडोर संभालूं।
1: मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूं कि अब तुम ऐसा करो। नहीं, आप देखिए, मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पूना से यहाँ आया था। बड़ा मजा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में, लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सीखते हैं। साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये मीडियम ही इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्शन करूं, तो मैं जरूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए,
0: चांस लेना
1: गोताबाना
0: है
1: हाँ चांस लेना चाहूंगा।
0: अच्छा,
1: व्हाई नॉट,
0: फिल्म में या सीरियल में?
1: किसी में भी।
0: किसी में भी।
1: हाँ
0: अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता, बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये क्या बात सही है?
1: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि
0: आप बड़े आर्टिस्ट हैं भाई।
1: हाँ, तो मैं तो ऐसा नहीं करता हूं। तो अगर आप, हाँ मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। देखिए, आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती है कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूं डायलॉग लाइन को यूं करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में। तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स, हम लोग कठपुतलियां नहीं है, एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियां,
0: जी।
1: हम सोचने वाले जीव जंतु हैं। और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज जो है या ये लाइन, ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी, या के सच्ची लगेगी। सच्चा लगना बड़ा जरूरी है।
0: ये सच्ची बात जो है आपने बोला, सच्चा लगना जरूरी है। कहते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, तो ये बात भी क्या सही है? क्योंकि मैंने देखा
1: पता
0: है
1: नहीं,
0: कई एक्टर बड़े अच्छे हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स।
1: मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना, वो बुरा है या अच्छा है भाड़ में जाए।
0: वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहां से आपने शुरुआत की, और उसके आप तो बहुत सीढ़ियां आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं। कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को सफलता नहीं मिलती। आपको कैसा लगता है ये?
1: देखिए, ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले, वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं।
0: आप पीछे मुड़ के नहीं देखते?
1: मैं कोशिश नहीं करता पीछे न देखने की, पर मेरी फितरत में ही नहीं है, मैं पीछे देखता ज्यादा नहीं हूं।
0: मतलब जो छूट गया वो छूट गया।
1: मतलब कुछ उसमें मेरा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी नहीं है, या फिर मेरी ये कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूं, इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें। बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूं, ये सब भी नहीं है। बस ये जो इस वक्त कर रहा हूं बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त, हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं भाई अब बस जीना अच्छा लगता है।
0: वाह वाह,
1: हाँ, तो ये काम अच्छा लगता है
0: मतलब
1: जो
0: छैया छैया।
1: हाँ,
0: तो
1: छैया
0: आइए
1: छैया
0: फिर सुनते हैं छैया छैया,
1: बेशक
0: है आपको
1: बिल्कुल
0: पसंद है ना?
1: बहुत पसंद है।

0: अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं?
1: एक्टिंग
0: एक्टिंग के अलावा एक्टिंग
1: देखिए बेसिकली
0: मतलब 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते हैं, वेदर कैमरा इज ऑन और
1: नहीं। ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है जो मैं उसके सामने करता हूँ
0: कैमरे
1: के सामने, उसमें से एक्टिंग बिल्कुल खत्म कर दूं।
0: अच्छा
1: तो हाँ, तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं, तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद खत्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं, लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा मैं मुझे शौक है खेलने के, आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में, स्कूल में भी और अब भी। टेनिस खेलता हूँ मैं और टेनिस से बहुत लगाव है, बहुत इश्क है, और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती
0: शीशे टूट जाते हैं
1: तो जब वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं, जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे।
0: अच्छा तो आप उनकी मदद भी करते होंगे किचन में या वो आपकी ही मदद करती रहती
1: है? नहीं, मैं उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती है कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना, हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में कि, और अकेला रहा हूँ जिंदगी में, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मुझे नहीं बनाना आता।
0: अच्छा आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
1: या एक अभिमान कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग, उनके साथ कर रहा हूँ, मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी 3 ऑलरेडी चल रहे हैं तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर सकूँ,

0: ये खत्म होने वाले हैं, कुछ सांस जैसे हुआ ये खत्म हो जाएगा, तो फिर दूसरा आई टेक ऑन, एक आधा पायलट किया हुआ है और पायलट किए नीना के साथ, दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है। तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को,
1: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप।
0: हाँ जितना अपनी पूरी एबिलिटी, अपना पूरा कंसंट्रेशन मैं जिस काम को दे सकूं वही करता हूं। तो अच्छा, आप मेरे मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे, आपको क्या पसंद है?
1: मुझे आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी
0: हाँ
1: सत्ते पे
0: सत्ता,
1: सत्ता,
0: जी हाँ जी
1: है ना।
0: हाँ, तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़
1: आहा,
0: पे ले
1: ले
0: आया।
1: आया है।
0: चलिए साहब,

0: अच्छा कमल जी,
1: जनाब।
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभी नहीं करता। मैंने जैसे शुरू में बताया, मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में, तो वहाँ इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह। तो मुझे समझ नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम, इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ है इस काम से, कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाता है
1: हाँ,
0: कुछ और
1: बेकार
0: कर ही नहीं सकता एक्टर बन के।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: नहीं, एक्टर बन के बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इसको इससे
0: मतलब
1: अगर
0: इश्क
1: इश्क
0: हो
1: हो
0: जाता
1: जाए, अगर
0: है।
1: इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे, तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता।
0: अच्छा कई ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा? तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ चाहे काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किन के साथ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जिनके साथ मैंने काम किया है ऑलरेडी, उनको मैं जानता हूँ, और उनमें मोस्टली बड़ा मज़ा आया है सबके साथ काम करने में। और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, तो मैं कह नहीं सकूँगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं, वरना एक वो होता है इंस्टिंक्टिवली आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो ज़रा रेपिटेटिव हो जाता है।
0: नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे ही कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ
1: नहीं
0: गया,
1: नहीं
0: आप थोड़ा काम कर लो,
1: मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ।
0: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है या लॉन्गिंग
1: ना
0: नहीं है कि मैं उसके
1: ना
0: साथ
1: ना
0: काम
1: ना ना
0: करूं,
1: ना
0: ऐसा कुछ भी नहीं है?
1: नहीं,
0: चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा।
1: मूड अच्छा हो जाए। चलिए, तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता
0: ठीक
1: है। तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा वाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त विकास का नमस्कार। कई श्रोताओं के हाल चाल है। श्रोताओं, कार्यक्रम युवाणी की बात करें या आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल की बात करें तो हाल ही के दिनों में हमने काफ़ी परिवर्तन किए हैं कार्यक्रम में, और वो जो सारे परिवर्तन हुए हैं वो आपके सुझाव को ध्यान में रखकर किए गए हैं। और युवाणी कार्यक्रम में भी कई नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं, जिसमें आज का जो कार्यक्रम है फ़ोन करें कि सुने, ये प्रमुख है। और इसके बाद ये कार्यक्रम होता है मंगलवार को और शनिवार को, दो दिन। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और कार्यक्रम में आज पहला फ़ोन कॉल हमें आया है रूण से रामनिवास कोलिया का, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म ऐतराज़ का ये सॉन्ग।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव बाराणी से, सुरेंद्र सियाग, महेंद्र सियाग और राम सिंह सियाग की, और ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का ये सॉन्ग।

कार्यक्रम युववाणी में आप सुन रहे हैं फोन करे गीत सुने, और कार्यक्रम में ये फोन आया है हमारे पास दीपक सोनी, सुरेश सोनी, महेंद्र सोनी और राजू सोनी का, और ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म दोस्ताना का ये सॉन्ग।

श्रोताओं, सड़क फिल्म के इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है फ़ोन के माध्यम से। खुर्शीद गौरी, हमीद रफ़ीक और सुल्तान की नकास गेट नागौर से। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: श्रोताओं, ये फ़ोन कॉल आया हमारे पास देवाराम सैनी, कमलेश सैनी और राजेश सैनी का, चेनार गांव से, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म अमर अकबर एंथनी का ये सॉन्ग।

श्रोताओं, युववाणी में अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट फोन करें गीत सुने। तो अब घड़ी का इशारा है कि आपसे विदा लेना होगा, तो अपने दोस्त विकास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

0: हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर मुश्किल आसान हो जाती है जब इरादों में जान होती है। चिरमी चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं और सभी प्यारी सखियों को सुनीता चौधरी का नेभरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महिला जगत में। सखियों, आज 15 सितंबर है और हर साल इस दिन को राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि आज नेशनल इंजीनियर्स डे है। सखियों, ये दिन भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की उपलब्धियों को मान्यता देने और उनके सम्मान में मनाया जाता है। सखियों, एम विश्वेश्वरैया का जन्म 1861 में आज ही के दिन यानी 15 सितंबर के दिन हुआ था और उनके जीवन काल की जो उपलब्धियां थी और उनकी जो देन थी, उनके जो योगदान थे, उन्हीं के सम्मान में आज के दिन को इंजीनियर्स डे घोषित किया गया और ये मनाया जा रहा है। सखियों, वर्ष 1955 में एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इसके अलावा भी अनेकों अनेक उपहार, उपाधियां और सम्मान उनको प्रदान किए गए थे। वर्ष 1962 में बंगलुरु कर्नाटक में उनका निधन हो गया। सखियों, भारत में ये अभियंता दिवस जो है वो इंजीनियर्स और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करता है। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है सखियों क्योंकि इंजीनियरिंग बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, परिवहन, जल प्रणालियों और नवाचार के माध्यम से दैनिक जीवन को आकार देती है। इस वर्ष इस दिन के लिए थीम रखी गई है नवाचार और डिजिटलीकरण के माध्यम से एक स्थायी भविष्य के लिए स्मार्ट इंजीनियरिंग, जो कि जिम्मेदार विकास में आधुनिक इंजीनियरिंग की भूमिका को उजागर करता है। सखियों, यह दिन स्मरण, सम्मान और ज्ञान का संगम है और एक सार्थक स्मरण दिलाता है कि इंजीनियरिंग केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ज्ञान और जिम्मेदारी के साथ वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने का एक तरीका भी है। कुछ और भी है खास आज के दिन, हम करेंगे बात इसके बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: सखियों, राष्ट्रीय अभियंता दिवस के साथ ही आज लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और उन्हें कायम रखने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी विश्व स्तर पर मनाया जाता है। सखियों, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में एक औपचारिक प्रस्ताव के माध्यम से की थी और पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2008 को मनाया गया था। सखियों, इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये देशों को विश्व स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। सखियों, 15 सितंबर को हर साल इस खास दिन लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर वाद विवाद, चर्चा और सम्मेलन जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो ये थी आज की बात और कार्यक्रम में अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और आपको सुनवाएंगे खूबसूरत सा गीत।

0: साथियों, आज के समय में स्क्रीन एक ऐसी चीज है जो हर किसी की पसंद, हर किसी की फेवरेट साथी और जिंदगी का अहम हिस्सा बनती जा रही है। स्क्रीन यानी कि ये स्क्रीन कोई सी भी हो सकती है, जैसे मोबाइल फोन की हो सकती है, स्मार्टफोन की हो सकती है, साथ ही साथ कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या फिर टेलीविजन, किसी की भी ये स्क्रीन हो सकती है। स्क्रीन का मतलब बस हमें उसके सामने बैठे रहना है और वो खुद ब खुद चलती है, हमें सुनाती है, दिखाती है, हंसाती है, रुलाती है और हमारी जिंदगी में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम बस उसी में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं। हमारे आसपास में क्या हो रहा है इस बात की तो हमें खबर ही कई बार नहीं होती है। अब किसी वजह से अगर इस स्क्रीन से दूरी हो जाए तो जिंदगी ही मानो ठहरी हुई सी लगने लगती है। आज से क्यों बड़े ही नहीं, बच्चे जो है वो भी बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं और धीरे धीरे ये कब आदत और आदत से लत बन जाती है पता ही नहीं चलता। और जब तक हम कुछ सोचे या समझे, बच्चा स्क्रीन का एडिक्ट हो चुका होता है। जब भी बच्चे मोबाइल बच्चों से कहते हैं ना कि मोबाइल रख दो, तो वो क्या कहेगा कि बस 5 मिनट, और ये 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते। इस लत की वजह से ही बच्चे सही से ना तो पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और घर परिवार दोस्तों के साथ टाइम बिताने से भी कतराते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है मोबाइल चलाने की फिराक में रहते हैं। अब पेरेंट्स बच्चों को स्क्रीन से दूर तो रखना चाहते हैं, वो भी उनकी ये लत छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन कैसे छुड़ाएं और करें क्या, थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: से क्यों हम बात कर रहे थे कि अगर बच्चा स्क्रीन एडिक्ट हो गया है तो उसकी आदत हम छुड़ाए कैसे, ये लत उसकी दूर करें कैसे। तो सखियों, पहली बात तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि शुरू से ही ध्यान रखें। आजकल आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल फोन हाथ में पकड़ा दिया जाता है, या फिर छोटे थोड़े से समझदार बच्चे हो गए हैं, बैठने लगे हैं, तो उनको टीवी के सामने बैठा दिया जाता है। अब टीवी पर या तो कोई वीडियो लगा दिया जाता है जो बच्चे देखते रहते हैं, उसमें बिजी लगे रहते हैं, और या फिर जैसे अगर फोन भी पकड़ा दिया तो क्या है कि आपको वो बच्चा परेशान ना करे, आप अपना टाइम जो है वो आराम से अपने हिसाब से स्पेंड कर सकें, इसलिए आप बच्चे को स्क्रीन के साथ बिजी कर देते हैं, वही धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो शुरू से ही ये बात ध्यान रखें कि बच्चे को इस तरह से बहलाए नहीं, यानी कि स्क्रीन का साथ उसको बहलाने के लिए नहीं दे। इससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे ललक बढ़ती चली जाती है, फिर वो जिद करने लग जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपने शुरू में ध्यान नहीं रखा, उसको फोन तो दे दिया या फिर आपने उसको उसकी दूसरी कोई स्क्रीन की आदत तो डाल दी, अब वो जिद्दी

गया है, उसकी जिद करता है, तो यहाँ आपको उसकी जिद पूरी नहीं करनी है, उसको समझाना है। और उसको आप ये कर सकते हैं कि जिस टाइम पर वो ये जिद कर रहा है तो उसको समझाएं कि हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे अगर तुम अभी स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, यानी अगर अभी फोन नहीं चलाओगे तो हम तुम्हें शाम को या फिर कल या फिर छुट्टी के दिन घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। या आप उसको कुछ अच्छा खाना बनाकर खिलाने की भी लालच दे सकती हैं, उसको फूड अगर कोई और अच्छा लगता है तो आप विश्वसनीय जगह से मंगा कर भी उसको खिला सकती हैं। यानी कि ये छोटी छोटी चीजें ज्यादा नुकसान नहीं देंगी इसे, क्यों, ये लालच देना बुरा नहीं है, उसको जो स्क्रीन की लत लगी है उसको छुड़ाना ज्यादा जरूरी है। तो आप किसी भी तरह से अपने बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करके उसकी जिद को बिना पूरा किए उसको समझा सकती हैं। ये ध्यान रखें सगियो हमेशा कि जो ये लत है वो रातों रात नहीं लगी, तो वैसे ही इसको दूर होने में भी समय लगेगा। केवल डांटने से ये एडिक्शन दूर नहीं होगा, और ना ही किसी और के सामने अगर बच्चे की शिकायत करेंगे, बच्चा सुन नहीं रहा है, कहना नहीं मान रहा है, ये रोना रोने से भी उसकी आदत नहीं बदलेगी। इसके लिए क्या होगा सखियो, सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाएं, इससे भी बच्चे मोटिवेट होंगे। बच्चों के साथ बैठें, कहानियां सुने भी और सुनाएं भी, कुछ अनुभव साझा करें। जितना आप खुद स्क्रीन से दूर रहेंगे उतना ही बच्चे को भी रख पाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चों का पहला जवाब यही होता है जब आप उससे ये कहेंगे कि इतना मोबाइल नहीं चलाते, तो वो तुरंत आपको जवाब देगा आप भी तो चलाते हो, इतना टीवी नहीं देखते आप भी तो देखते हो। तो फिर हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए पहले हमें रुकना होगा और उसको देखो हम टीवी नहीं देखते ना, तो तुम भी अभी मत देखो, देखो हम इतना फोन नहीं चलाते ना, तो तुम भी मत चलाओ। इस तरीके से हम बच्चे का जो ध्यान है वो बदल के उसमें सुधार ला सकते हैं। सो क्यों, बच्चों को अटेंशन हमेशा चाहिए होता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उनको पूरा ध्यान दे। जब भी बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसको सुने, उनके फ्री टाइम के अनुसार आप उनको पेंटिंग, म्यूजिक या कोई डांस क्लास या रुचि के अनुसार, जो बच्चा जिसमें रुचि रखता है उसके अनुसार कोई क्लास आप ज्वाइन करवा सकते हैं। इससे उनको समझ आएगा कि स्क्रीन से बाहर भी एक दुनिया है। सो कि अगर बच्चे को टीवी देखना है या फिर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट चलाना है तो उसका भी टाइम निश्चित करें, क्योंकि पूरी तरह से बंद तो हम नहीं कर सकते, लेकिन टाइम निश्चित कर दें, क्योंकि 5 मिनट कब से 50 मिनट में बदल जाते हैं इस बात का पता ही नहीं चलता, इसलिए टाइम लिमिट का पालन जरूर करें। सो क्यों, आजकल जिसको देखो, छोटा हो बड़ा हो, कोई लड़की हो, महिला हो, हम सखियां हो या हमारे कोई से भी श्रोता को आप देख लो, जब भी टाइम मिलेगा तो क्या करेंगे, हाथ में मोबाइल फोन ले रखा होगा और रील्स और शॉर्ट्स जो हैं वो स्क्रॉल करते रहते हैं। बच्चों के सामने ऐसा कभी भी नहीं करें। बच्चों को गेम्स के बजाय आप क्रिएटिव वीडियो दिखा सकते हैं। कोशिश करें कि अपने फोन को टीवी से ऐड करके वहां आप उसको वीडियो देखने दें, ताकि क्या है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, इस बात की भी आपको जानकारी रहेगी। सो क्यों, घर में नो मोबाइल डे, नो मोबाइल जोन इस तरह के आप बना लीजिए कि यह आज का दिन नो मोबाइल डे है, ये हमारे घर की जगह है जहां नो मोबाइल जोन है, यहां मोबाइल अलाउ नहीं है। जैसे खाने के समय में आप बच्चे को कह सकते हैं कि अभी स्क्रीन के सामने नहीं रहना है, ना तो टीवी चलाना है, ना फोन हाथ में होना चाहिए। सो क्यों, आप भी डिजिटल डिटॉक्स फॉलो करें। एडिक्शन रातों रात नहीं लगा है तो रातों रात छूटेगा भी नहीं, लेकिन अगर कोशिश करते रहेंगे तो परिणाम जरूर मिलेगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला खूबसूरत सा गीत।

सिखियो, एक उम्र के बाद पीरियड्स का शुरू होना और एक एज तक आते आते मेनोपोज यानी कि रजोनिवृत्ति, ये भी एक सामान्य सी प्रक्रिया है। यानी कि हर महीने मासिक धर्म जो आता है यानी महावारी अगर आती है तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये हर महिला के लिए एक सामान्य शारीरिक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन इन दिनों में हमें हमारी सेहत से जुड़े कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, जिनको हम पीरियड्स के दौरान होने वाला जो फ्लू है और जो स्मेल आती है उससे हम समझ सकते हैं। सेकंड, जैसे जो पीरियड्स का फ्लो और स्मेल है वो हमारी अंदरूनी सेहत और हार्मोन्स के संतुलन का आईना होते हैं, और इस दौरान जो ब्लड रिलीज होता है वो केवल सामान्य ब्लड नहीं होता है, बल्कि इसमें जो हमारी ओवरी होती है यानी गर्भाशय होता है उसकी परत के टिश्यूज भी होते हैं और इनर पार्ट के कुछ नेचुरल बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं। सिक्यों, स्वस्थ पीरियड अगर हम मानते हैं जो हेल्दी है उसके अंदर एवरेज ऐसा माना जाता है कि 30 से लेके 80 ml तक ब्लड रिलीज होता है और ये जो प्रोसेस है वो 3 से लेके 7 दिन तक चलता है। शुरुआत में ये होता है ऐसे क्योंकि जो ब्लड फ्लो होता है वो तेज हो सकता है और बाद में धीरे धीरे ये हल्का होने लग जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल सामान्य है, इसमें डरने की या घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर फ्लो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हेवी हो या फिर ब्लड के बड़े बड़े थक्के आ रहे हों, जिसको हम बोल सकते हैं कि जैसे ये सबका अपना निजी व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन आप तो खुद को चेक करते रहते हैं तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि अगर बहुत बड़े थक्के हैं जिनको हम मान सकते हैं कि ग्रैप के बराबर के थक्के आ रहे हैं तो फिर यहाँ आपको थोड़ा सा देखने की और समझने की जरूरत है। इसको हम कह सकते हैं ये हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकता है, जैसे PCOD की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इन दिनों में हो रही है या PCOS हो रहा है तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको यहाँ समझने और सोचने की जरूरत है और डॉक्टर से जरूर आपको यहाँ मिलना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। या फिर से क्यों थायराइड की समस्या में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर मान लीजिए ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, गर्भाशय में फाइब्रॉइड अगर है तो भी हम इस चीज से समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ये इंडिकेशन हो इस बात का कि हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। और सखियो, अगर ऐसी प्रॉब्लम ये ज्यादा टाइम तक चलती है तो इसके कारण शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया भी हो सकता है। तो इसलिए लापरवाही नहीं बरतें, अपने आप को समझें, जानें और डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। सखियो, अगर फ्लो हल्का है या बहुत कम है, या फिर जैसे कई सखियों के साथ होगा कि सिर्फ स्पॉटिंग जैसा ही होता है, स्पॉट लग के रह जाता है और कुछ भी नहीं है, और या फिर जैसे एक या दो दिन में ही खत्म हो जाता है तो भी ये सोचने वाली बात होती है। ऐसा पहली बात तो अत्यधिक तनाव के कारण हो सकता है, या फिर अचानक से अगर वजन बढ़ गया है तो भी ऐसा हो सकता है। अगर आपका वजन घट रहा है, अचानक घट गया है तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उसके अलावा आपके शरीर में पोषण की कमी है, या फिर आप उस उम्र में हैं यानी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां मेनोपॉज की शुरुआत हो रही है तो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि जो फ्लो है बहुत ज़्यादा हल्का है या सिर्फ स्पॉटिंग है तो भी आपको इन जो चीज़ें हमने अभी आपको बताई एक बार गौर करना चाहिए कि इनमें से कुछ आपके साथ है क्या। अगर कुछ है तो आपको उसका समाधान भी ढूंढना चाहिए। सिक्यों, उसके अलावा पीरियड्स में जो गंध आती है, जो स्मेल आती है उससे भी हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हल्की मेटलिक यानी लोहे जैसे स्मेल अगर आती है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन मौजूद होता है और वो जब हवा के संपर्क में आता है तो फिर ऐसी स्मेल आती है। इसको हम किसी बीमारी का संकेत नहीं मानते। अगर खराब हाइजीन है, टेम्पोन या देर तक अगर आप नैपकिन चेंज नहीं करते हैं तो इसके कारण बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जिससे फिर सड़े हुए मांस जैसी तीव्र गंध आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टाइम टू टाइम हाइजीनिक रहते हुए अपने सैनिटरीज को चेंज करना ही है। अगर मछली जैसी गंध आती है तो ये इन्फेक्शन का संकेत है जिसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सखियों, अगर हल्की मीठी गंध आती है तो ये सामान्य pH बदलाव के कारण होता है। सखियों, अगर पीरियड्स में जो ब्लीडिंग हो रही है उसका रंग हरा या ग्रे दिखाई देता है, या फिर जो इनर पार्ट्स हैं प्राइवेट पार्ट्स में खुजली, जलन या दर्द जैसा कुछ होता है, पीरियड्स के बाद भी अगर बदबूदार डिस्चार्ज होता है या जैसे असहनीय पेट दर्द या पीठ दर्द होता है तो फिर आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए।
और सलाह लेके इलाज भी करवाना चाहिए। सो क्यों पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का ख्याल रखें, समय समय पर नेपकिन बदलते रहें और साफ सुथरी अंडरगार्मेंट्स का प्रयोग करें। थोड़ी सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखें और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। फिलहाल कार्यक्रम में ये गीत सुनें।

जो हार कर भी मुस्कुराते हैं वही असली जीत पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत अपनी सखी सुनीता चौधरी को, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार के पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। ये हैं किशोर कुमार और आशा भोसले, फिल्म राम बलराम।

ये हैं अलका याग्निक और उदित नारायण फिल्म प्रेम दीवाने में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिमी चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है जिसे गाया है गिन्नी, सुप्रिया और उनके साथियों ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर कार्यक्रम। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण लॉटरी निकालने का काम अब नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने न्याय, शांति और विकास के प्रति समर्पण को लोकतंत्र का बड़ा आधार बताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में डीआरडीओ और उद्योग जगत के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। किशाऊ परियोजना यमुना की प्रमुख सहायक टोंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रस्तावित है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा को इसका लाभ मिलेगा। परियोजना से राजस्थान को 124 एमसीएम पानी आवंटित होगा, जिसे हरियाणा के हांसी वासी से चूरू तक भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने की योजना है। इससे सीकर, चूरू और झुंझुनू सहित शेखावाटी क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों की सहमति से दशकों से अटकी परियोजनाओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने इस समझौते को राज्यों के आपसी सहयोग की मिसाल बताया।
1: मित्रों, हम कह सकते हैं जो दशकों से अटके हुए ऐसे विवाद थे जो सरकार सोचना भी नहीं चाहती थी, क्या आज उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच आज ये किसानों का समझौता इन 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। और हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इन 6 राज्यों में प्रगति की मिसाल भी बनेगी। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं।
0: प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण संबंधी लॉटरी निकालने का काम अब नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास विभाग की ओर से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए लॉटरी निकालने के लिए 17 सितंबर तारीख तय की गई थी। वहीं सरपंच और वार्ड पंच के लिए लॉटरी निकालने के लिए तारीख 18 सितंबर रखी गई थी। विभाग के उप शासन सचिव जसवंत की ओर से आज सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर

0: इन तिथियों पर लॉटरी निकालने के लिए काम को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि नगरीय निकायों के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में जिला स्तरीय अधिकारियों के व्यस्त रहने के कारण ये निर्णय किया गया है। विभाग की ओर से आरक्षण लॉटरी निकालने के लिए नई तारीखों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों को अलग से अवगत कराया जाएगा। राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में 25 सितंबर से आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और सहयोगिनियों का सम्मान किया जाएगा तथा बच्चों के लिए पेंटिंग, खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियां होंगी। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग की बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को लेकर संवाद आयोजित करने तथा इस क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश और बच्चों द्वारा तैयार पुस्तक भी आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में मातृ, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने तथा इन सेवाओं की पहुंच तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और यूनिसेफ के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। यूनिसेफ इंडिया के उप प्रतिनिधि जेस्पर मॉलर ने आज जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ से मुलाकात के दौरान इस संबंध में विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित और संवेदनशील वर्गों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने तथा नवाचारों को बड़े स्तर पर लागू करने पर जोर दिया गया। श्री मोलर ने प्री सर्विस मेडिकल एजुकेशन में बाल अधिकारों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि सबके लिए न्याय, शांति और विकास के प्रति समर्पण लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। श्री बागड़े ने ये बात आज जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में भारतीय युवा संसद के 31वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र संवाद और लोगों में विश्वास पैदा करने से मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा में मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव मुख्य बिंदु हैं।
1: एक सही मॉडल नहीं है, हो सकता है में सभी लोकतांत्रिक प्राणियों में स्वतंत्रता, सभी लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मानवाधिकार भी है और सभी का सम्मान और निष्पक्ष चुनाव, ऐसा सभी देश ने अपने अपने लोकतंत्र की जो परिभाषा की है उसमें रखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि डीआरडीओ और उद्योग जगत के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने आज ये बात नई दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्री सिनर्जी मीट विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने मिसाइल, रडार, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता साबित की है।
2: ईडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित ड्रोनाथॉन 2026 का आज दूसरा दिन है। तीन दिन के इस आयोजन का उद्देश्य मानव रहित प्रणाली उद्योग के साथ सीधे संवाद और वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में स्वदेशी तकनीकों की क्षमता का आकलन करना है। ड्रोनाथॉन में देश के मानव रहित प्रणाली क्षेत्र से जुड़ी 20 से अधिक रक्षा कंपनियां, स्टार्टअप, एमएसएमई, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और नवोन्मेषक हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स

0: भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।
1: मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
2: प्रदेश में इंजीनियर्स डे पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भरतपुर में अभियंता फोरम की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। पाली में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं रखी गईं। लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में एक विशेष स्वच्छता अभियान के तहत ऑनलाइन वेब पोर्टल शुरू करेंगे। इस पोर्टल के जरिए 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले विशेष अभियान की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा और सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये 6वां विशेष स्वच्छता अभियान है। इसमें नागरिकों से जुड़ी गतिविधियों और अच्छी कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के साथ ई वेस्ट के संग्रह, उसे अलग करने और उचित निपटारे पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत विभिन्न स्कूलों में आज विधिक जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में आज पाली के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विक्रम सिंह भाटी ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की जानकारी दी। उन्होंने बाल तस्करी, अपहरण और मानव तस्करी से जुड़े कानूनी प्रावधानों तथा किशोर न्याय अधिनियम के बारे में भी बताया। वहीं सवाई माधोपुर में स्कूलों में शिविर लगाकर न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए URATPG के दूसरे चरण के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी अब कल शाम 4 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी 17 सितंबर तक जमा की जा सकेगी। विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा संयोजक डॉ. नीकी चतुर्वेदी ने बताया कि विद्यार्थियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण लॉटरी निकालने का काम अब नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने न्याय, शांति और विकास के प्रति समर्पण को लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार बताया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में DRDO और उद्योग जगत के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं चिंतन जोशी। अरावली पहाड़ियों की गोद में सोम और माही नदियों के पास बसे डूंगरपुर जिले में बीते दिनों कई गतिविधियां हुई। जिले की चिट्ठी में हम बात करेंगे निकाय चुनाव और परिणाम की, गणेशोत्सव और जन्माष्टमी की, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और बाल विवाह रोकथाम के लिए चलाई जा रही जन जागृति मुहिम की। साथ ही बात करेंगे विकसित भारत जन सेवा अभियान की। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले डूंगरपुर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव की बात करते हैं। डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में से 24 में भाजपा ने जीत दर्ज की। पार्टी के 2 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं कांग्रेस ने 12 और BAP ने 3 तथा 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। यहां पहले चरण के तहत 9 सितंबर को मतदान हुआ। वहीं सागवाड़ा नगर पालिका में दूसरे चरण के तहत 11 सितंबर को वोट डाले गए। यहां 35 वार्डों के लिए लोगों ने मतदान किया। इसमें 23 में भाजपा ने जीत दर्ज की। 8 वार्डों में कांग्रेस और 4 में BAP विजयी रही। डूंगरपुर नगर परिषद में लगातार 8वीं बार भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है।
3: जिला कलेक्टर देशल दान की अगुवाई में पिछले दिनों जल और स्वच्छता मिशन की बैठक हुई। जल जीवन मिशन के तहत हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने की। इस दौरान हर घर नल कनेक्शन और अन्य कामों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ ने कहा कि जिन गांवों में हर घर जल का काम पूरा हो चुका है उन्हें

0: प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, साथ ही इसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाए। श्री राठौड़ ने अधिकारियों को जल सेवा आकलन के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिले में विकसित भारत जन सेवा अभियान की तैयारियां की जा रही है। 17 सितंबर से शुरू होकर ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। अभियान के तहत जन सेवा से जुड़े अनेक कार्यक्रम रखे जाएंगे। इनमें रक्तदान शिविर, शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रेरणादायी वीडियो प्रदर्शन के अलावा रैलियां भी होंगी। साथ ही आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और श्रमदान तथा सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हुए इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व की जानकारी दी गई। इस मौके पर निबंध प्रतियोगिता भी रखी गई। इसमें मनीष यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया, अरुण कुमार रोथ दूसरे और हिमांक चौबीसा तीसरे स्थान पर रहे। जिले के बिच्छीवाड़ा क्षेत्र के रातापानी में पिछले दिनों एक पेड़ मां यशोदा के नाम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी सचिव और आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने की। इस मौके पर उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 25 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाए। महिला अधिकारिता और समेकित बाल विकास विभाग ने पिछले दिनों डूंगरपुर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। कालीबाई भील उड़ान योजना के सुचारू संचालन के लिए ये शिविर रखा गया। इस दौरान महिला पर्यवेक्षकों को संबंधित पोर्टल के बारे में बताया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने उन्हें पोर्टल की कार्यप्रणाली का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों डूंगरपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट के बारे में बताया। अधिकारियों ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर चयनित टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। शीर्ष टीमें जिला और राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को जिले में कई कार्यक्रम हुए। विभिन्न विद्यालयों में सम्मान समारोह रखे गए। बीलड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता हुई। बाल विवाह की रोकथाम में शिक्षकों की भूमिका विषय पर हुई इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गणेश चतुर्थी का पर्व जिले भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शुभ मुहूर्त में गणेश प्रतिमाओं को विराजित किया गया। विभिन्न गणेश मंदिरों और पांडालों में गणेश स्तुति हुई। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राजस्थान समेत 6 राज्यां बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सारू आज नई दिल्ली माय करार माथे सही करी जी। प्रदेश माय पंचायती राज चुनाव सारू आरक्षण री लॉटरी, नगर निकाय चुनाव री प्रक्रिया पूरी भ्या पाछा निकाली जावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े न्याय शांति और विकास रा प्रति समर्पण ने लोकतंत्र री मोटी बुनियाद बताया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो DRDO और उद्योग जगत बीच भागीदारी री देश ने रक्षा विनिर्माण रो वैश्विक केंद्र बनावन माय खास भूमिका। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, राजस्थान समेत 6 राज्यों बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सारू आज नई दिल्ली माय करार माथे सही करी जी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस अदालत माय हुई मीटिंग माय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और 6 राज्यों रा मुख्यमंत्री करार माथे सही कीनी। किशाऊ परियोजना यमुना नदी री खास सहायक टॉस नदी माथे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश री सरहद माथे प्रस्तावित है। करीब 15,000 करोड़ रुपए रा खर्च री इन परियोजनाओं 660 मेगावाट बिजली बनाई जावेला, जिनरो राजस्थान उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने फायदो मिलेला। परियोजनाओं राजस्थान ने 124 MCM पानी मिलेला, जिन हरियाणा रा हांसी वासियों राजस्थान रा चूरू ताई जमी हेट पाइप लेन रे जरिए पुगावन री योजना है। इनु सीकर चूरू और झुंझुनू समेत शेखावाटी हल्का माय पीवण और पाणत सारू पानी री जरूरत पूरी करण माय मदद मिलेला। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माय राज्यां री सहमतियों कई बरसों अटक्योड़ी परियोजनावां रा काम फेरिया है। वह ई करार ने राज्यां रा आपसी सहयोग री मिसाल बतायो।
2: मित्रों, हम कह सकते हैं जो दशकों से अटके हुए ऐसे विवाद थे जो सरकार सोचना भी नहीं चाहती थी, क्या आज उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच आज ये किसानों का समझौता इन छह राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। और हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इन छह राज्यों में प्रगति की मिसाल भी बनेगी। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता।
1: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव सारू आरक्षण जुड़ी लॉटरी निकाल बारो काम अब नगर निकाय चुनाव री प्रक्रिया पूरी फिया पाछा करियो जावेला। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास विभाग री ओरों जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों सारू लॉटरी निकाल बारी तारीख 17 सितंबर और सरपंच और वार्ड पंच सारू लॉटरी री तारीख 18 सितंबर तय करी ची ही। विभाग रा उप शासन सचिव जसवंत री ओरों आज सगला जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कागज लेकर आज तिथियां माथे लॉटरी नी निकाल बारा हुक्म दिया चिया। इन बीच राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव रा तहत कुछ मतदान केंद्रा माथे ईवीएम माय तकनीकी खराबी रा कारण ओजु वोट करावन रा हुकम दीना है। वोट काल समारा 7 से 6 बजे ताई पड़ेला। वोटा की गिनती 17 सितंबर न करी जावेला। प्रदेश माय मायड़ा नुआ जन्मिया टाबर टाबरिया बच्चा और किशोराओं जुड़ी स्वास्थ्य सेवावां ने और मजबूत बनावन सारू यूनिसेफ इंडिया रा उप प्रतिनिधि जैस्पर मोलर और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बीच आज जयपुर माय बातचीत हुई। मीटिंग माय स्वास्थ्य सेवावां ने बेहतर तरीकाओं जनता ताई पुगावण और नवाचारा ने मोटा पैमाना माथे लागू करण जुड़ी बातचीत करी जी। श्री मोलर प्री सर्विस मेडिकल एजुकेशन माय बच्चा रा अधिकारां री जानकारी शामिल करण सारू कहो चिंपा छे। प्रमुख शासन सचिव श्रीमती राठौड़ यूनिसेफ हूं इबारा माय विगतवार जानकारी देवन री अरज कीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंजीनियर्स डे रे मौके देश रा सगला इंजीनियरां ने शुभकामनावां दीनी है। वे महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया ने श्रद्धा भाव सागर याद करता थका कहो के इंजीनियर बेहतर भविष्य सारू निर्माण, नवाचार और समाधान मुहैया करावण माय खास काम करे है। प्रधानमंत्री कहो के सर एम विश्वेश्वरैया री इंजीनियरिंग प्रतिभा और देश बनावण री दूर दृष्टि सगला ने सीख देवे है।
3: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूं।
1: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो है कि सगला सारू न्याय, शांति, विकास और मानवाधिकारों का प्रति समर्पण लोकतंत्र री सब मजबूत बुनियाद है। वह अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस रे मौके आज जयपुर माय राखी जया भारतीय युवा संसद रा 31वां अधिवेशन माय बोल रहा है। श्री बागड़े नौजवानों लोकतंत्र ने मजबूत बनावन रा काम माय सक्रिय भूमिका निभावन सारू कहो। वह कहो के बातचीत और जनता माय भरोसो पैदा करण लोकतंत्र मजबूत बने है। राज्यपाल नौजवानों लोकतंत्र रा पहरेदार रा तौर काम करण बाबत कहो। श्री बागड़े कहो कि लोकतंत्र री परिभाषा में मानवाधिकार व्यक्तिगत आजादी और निपक्ष चुनाव खास

0: बिंदु है।
1: एक सही मॉडल नहीं है, हो सकता राज्य में सभी लोकतांत्रिक प्राणियों में स्वतंत्रता, सभी लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मानवाधिकार भी है और सभी का सम्मान और निष्पक्ष चुनाव, ऐसा सभी देश ने अपने अपने लोकतंत्र की जो परिभाषा की है उसमें रखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और उद्योग जगत बीचे भागीदारी भारत ने हिफाजत जुड़िया साजो सामान बनावण रो वैश्विक केंद्र बनावण माए खास काम कर सके है। श्री सिंह आज नई दिल्ली माए DRDO इंडस्ट्री सिनर्जी मीट विमर्श 2026 माए बोल रहा है। वह कहो कर DRDO मिसाइल, राडार, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां सागे कृत्रिम बुद्धिमता AI रा हल्का मा एक क्षमता साबित कीनी है।
2: EDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। IDEX ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: जैसलमेर री पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना री ओर रखा जा रहा ड्रोनाथॉन 2026 कार्यक्रम रो आज दूजो दिन हो। 3 दिन रा ई आयोजन रो मकसद असली परिचालन हालात में देशी तकनीकान अबूता री पिछाण करनु है। ड्रोनाथॉन में देश रा मानव रहित प्रणाली हलकाओं जुड़ी 20-32 रक्षा कंपनियां, स्टार्टअप और MSME समेत न्यारा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र रा उपक्रम शामिल फैरिया है। प्रदेश में चलाया जा रहा ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे कार्यक्रम रा तहत पाली री न्यारी न्यारी स्कूला में विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखी गया। पालीरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव विक्रम सिंह भाटी विद्यार्थियों ने बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया रा बेजा इस्तेमाल रे बारा में जानकारी दीनी। सवाई माधोपुर में आई स्कूलों में शिविर लगार न्यायिक अधिकारी बच्चों ने मारा कानूनी हक री जानकारी दीनी। राजस्थान विश्वविद्यालय में न्यारा न्यारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला सारू URATPG रा दूजा दौर में अर्जी देवन री आखिरी तारीख बधा दे रही है। विद्यार्थी अब काल सिंजा 4 बजे ताई ऑनलाइन तरीकों अर्जी दे सके है। अर्जी रो कागज 17 सितंबर ताई जमा करायो जा सकेला। विश्वविद्यालय री प्रवेश परीक्षा संयोजक डॉक्टर निकी चतुर्वेदी बतायो कि मेरिट रा आधारों दाखिला वाला कोर्स सारोई अर्जी देवन री आखिरी तारीख काल ताई बधा दे रही है। स्नातकोत्तर विभाग में दाखिला री पहली लिस्ट 23 सितंबर न जारी करी जावेला। राज्य में 17 सितंबर विकसित भारत जनसेवा अभियान चलायो जावेला। 17 अक्टूबर ताई चालन वाला ई अभियान रा तहत जनतारी भागीदारी रे जरिए विकसित भारत बनावण रा संकल्प ने आगे बढ़ावण रा मकसद न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जावेला। जैसलमेर री जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल आज अहलकारां सागे मीटिंग कर और अभियान रे दौरान करया जावण वाला कामा रो जायजो लीनो और जरूरी व्यवस्थावां टेम सर पूरी करण रा हुकम दीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। हर महीना प्रसारित करया जावण वाला ई कार्यक्रम रे 138वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 मथे 25 सितंबर ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। राजस्थान समेत 6 राज्यों बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सारू आज नई दिल्ली में करार माथे सही करी ची। प्रदेश माए पंचायती राज चुनाव सारू आरक्षण री लॉटरी नगर निकाय चुनाव री प्रक्रिया पूरी भ्या पाछे।

0: काली चावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े न्याय शांति और विकास रा प्रति समर्पण ने लोकतंत्र री मोटी बुनियाद बताया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो DRDO और उद्योग जगत बीचे भागीदारी री देश ने रक्षा विनिर्माण रो वैश्विक केंद्र बनावन माए खास भूमिका। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवार 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरवी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इसका प्रसारण हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से कर रहे हैं।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली छिकाया, करे जो मेहनत कदे लालच में न आया, बैठ टूटी झोपड़ में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगड़ा काश्तकार भाई बहना ने चंचलो नेह भरियो मीठो मीठो राम राम, और सगड़ा बड़ा बूढ़ा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मौसी, बहन भाईली बुआ, सब ने ढोगर जैसा, और मनस्विनी आपने भी घने मानो राम राम सा।
7: खूब खूब राम राम चंचल बहन, और आपने किसानवाणी कार्यक्रम ने सुनबड़ा सगड़ा हेतालु श्रोता गणा ने काश्तकार भयार बहना ने मनस्वनी रो स्नेह भरो राम राम सा।
6: देखो आपा किसान वाणी तो कर ही रहा हाँ, और काश्तकार जो है कोई भी देश को होवे वो भी देश की रीढ़ होवे है, क्योंकि अगर किसान नहीं होवे लो, अन्न नहीं उपजे लो, तो जो जनता है वह खावे ली कहीं, तो यह बात तो है ही है। लेकिन बीके सागे सागे ही जद तकनीकी को युग वे और निरंतर बढ़वा की, आगे जाबा की, और जो आविष्कार करबा की, नई नई जुगत लगाबा की, नई नई खोज करबा की, और नया नया संसाधन बनाबा की बात आवे है, तो बीके भी आपाने सम्मान करना चाहिए। जी यान की आज को जो दिन है विशेष तौर 15 सितंबर, और ई दिन आपा मनावा हाँ राष्ट्रीय स्तर पर अभियांत्रिकी दिवस। और अभियांत्रिकी दिवस यानी जो इंजीनियरों को दिन आपा कह सका हाँ, अब आजकल तो भात भात का इंजीनियर होगा लाग गया साहब है, कि कोई तो कंप्यूटर का इंजीनियर है, तो कोई बिजली का है, तो कोई मशीना का है, तो कोई इमारत बनावा का है, भात भात का इंजीनियर है। पर मोटा तौर पर यो जो दिन है यो समर्पित है अपना जो एक बहुत ही बढ़िया अभियांत्रिकी या अभियंता जो हुआ है मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरिया बा को जन्मदिन आज के दिन आवे हो। और 15 सितंबर 1861 में जन्मया, और आपको जो योगदान है वो यो है कृष्ण राज सागर बांध जो हैदराबाद शहर में बाढ़ सुरक्षा के ताई बनाए गए भी परियोजना में ए बहुत ही महती भूमिका निभाया।
7: और अपना इंजीनियर यानी कि अपना अभियांत्रिका केवल मशीन

0: भवन या सड़क बड़ा बड़ा विशेषज्ञ कोनी होवे सा, बल्कि वे समस्याओं रा वैज्ञानिक समाधान खोज और देश ने विकास की गति दे बड़ा अपना राष्ट्र निर्माता भी है।
1: ई हिसाब से तो जो माया होवे ना वे भी बड़ी बढ़िया सी इंजीनियर मानी जा सके, क्योंकि वे भी राष्ट्र निर्माण के ताई जो मजबूत इरादा सैनिक बनावे है, नागरिक बनावे है, और जो जूना जूना खेतरा में जाए, चाहे कोई डॉक्टर बने, चाहे कोई काश्तकार बने, कोई व्यापारी बने, तो वे सब सफल हुए। लेकिन बाकी पीछे भी जो जो शिल्पकार हुए है, जो इंजीनियर हुए व माँ हुए है,
0: बिल्कुल सा, और वाके ही पीछे आज आपनो देश आधुनिक अति बढ़िया तरक्की कर रहे है। बिजली, परिवहन, संचार, जल प्रबंधन, चिकित्सा उपकरण, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल तकनीक और औद्योगिक विकास में आपनो देश अग्रणी है सा।
1: बिल्कुल, और अग्रणीय तो है ही है और आगे और बढ़े है। यहाँ कह सका आप कि चांद सितारा छुए आपनो देश को हर एक नागरिक, और इके लिए जो नई नई तकनीका है बाने अपनानो चाहिए। और जब नई तकनीका की बात आवे ना, तो आज एक बहुत ही बढ़िया विशेषज्ञ जानकार से मुलाकात हुई और बहुत ही चोखी जानकारी, नई जानकारी, नई तकनीका की जानकारी खेती बाड़ी से जुड़ोड़ी भी मैंने मिली। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो सुना दिया आपना श्रोतावा ने।
0: हाँ सुनाओ सर।
1: श्रोताओं, आज आपने सागे कार्यक्रम में आया है राजेश कुमार सैनी, आप उद्यान सलाहकार हो, और आसो आप जाना ला टेरेस गार्डनिंग समय की मांग। टेरेस गार्डन या टेरेस सो अर्थ समझ में आवे कि छत पर, और गार्डनिंग यानी बगीचो आप लगा सका। हाँ, अब तो मोटो मोटो तो मने समझ में आवे है, पर तकनीकी जो भाषा है या तकनीकी जानकारी है वे तो अपना पावना ही देशी। तो सब पहली आप लोग कार्यक्रम में सैनी साहब घने मानू स्वागत। राम राम सा।
2: राम राम सा।
1: जी आनकी आज आप टेरेस गार्डन की बात कर रहे हैं, यो काई हुए है की तरीका सु एक आम श्रोता समझ सके, बताओ साहब।
2: आम तौर पे ये कहा जाता है कि टेरेस गार्डन का मतलब होता है छत पे लगाए बगीचा, जो बगीचा छत पे लगाया जाए उसको टेरेस गार्डन बोलते हैं, और कुछ लोग इसको रूफ टॉप गार्डनिंग भी कहते हैं क्योंकि छत के ऊपर लगा जाता है। तो इसमें खास बात ये होती है कि पूर्व में जो हम लोग खेती करने वाले लोग हैं, जो गांव में रहते थे, रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आ गए। शहरों में आने के बाद में जो प्लॉट लेके लोग रहने लगे, तो उसपे प्लॉट बड़े लिए जाते थे और उसपे थोड़ा कुछ इलाके में खेती की जाती थी, जिसको कि किचन गार्डन कहा जाता था। परंतु जैसे जैसे नगर महानगरों में बदल गए, तो उसकी वजह से जमीन पे, भूमि पे दबाव बढ़ा, जिसकी वजह से अब खाली मकान मकान है और उसकी छत है। तो जब छत है तो उसके ऊपर खाली ये है कि छत के ऊपर आप कुछ गार्डनिंग का काम कर सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं, चाहे वो सब्जियों का बगीचा हो या फूलों का बगीचा हो या फिर बड़े पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों का जो शौक था प्रकृति से जुड़ाव रहना जरूरी है, तो लोगों ने चालू किया अपने छत पे काम करना, तो उसे टेरेस गार्डन का नाम दिया गया।
1: जी सनी साहब, बहुत चोखी बात आप कहा कि जब गांव से शहर की तरफ आया तो बड़ा जमीना का टुकड़ा लिया, आधा में घर बनायो, आधा में फिर किचन गार्डनिंग करी, और फिर जब दबाव बनो तो मकान मकान रह गयो, और जब वो गार्डन को जो क्षेत्र हो वो खत्म हो गयो। अगर कोई टेरेस गार्डन लगा बो चावे लो आज का दौर में, तो कई चुनौतियां भी के सामने आवेली।
2: देखो, सबसे पहले तो उनको अपने घर वालों को बनाना होगा कि भाई मैं छत पे ऐसा कार्य करना चाहता हूँ। घर वालों ने सपोर्ट किया, पहली बात तो घर को
1: मोटी बात है साहब।
2: और उसके बाद में तुरंत आपको ये तय करना होगा कि भाई इसमें जो कितना खर्चा आएगा, और फिर आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि मेरा जो छत है उसमें कितना लोड वो ले सकती है, उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कौन से पौधे लगाने, क्योंकि आपके वहाँ हो सकता है पानी की कमी हो। अगर जयपुर की बात करें या जयपुर के आसपास के शहरों की बात करें, तो वहाँ पे पानी की कमी है, तो उसमें अपने को ये भी तय करना पड़ेगा कम पानी वाले पौधे कौन से लगाए जा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप पौधे लगाते हैं तो आपको क्लियर कट ये पता होना चाहिए ये पौधे को ज्यादा पानी चाहिए, इसको कम चाहिए, क्योंकि कम और ज्यादा पानी वाले पौधों को पास पास नहीं लगाया जाता, क्योंकि अपने को उसमें ड्रिप इरिगेशन करना है या ऑटोमेशन करना है। तो ऑटोमेशन में क्या हो जाता है कि आपके जो पौधे एक जगह लगे हुए हैं, ड्रिपर्स एक जैसे हैं, तो एक जैसा ही पानी लगेगा, या तो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। तो उसमें कम वाले को कम वाले के साथ रखना है, ज्यादा वाले को ज्यादा वाले के साथ रखना है। आमतौर पे जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनसे ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि उनको वाटर रिक्वायरमेंट पौधों का पता नहीं होता। तो सही पौधे का चुनाव करें उसका वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस वातावरण के हिसाब से। जैसे यहाँ पे तेज गर्मी और तेज सर्दी दोनों है, तो उस समय आपको उस हिसाब से आपको पौधों का चयन करना है। दूसरा, आपको ये तय करना है कि मुझे सब्जियों का बाग बगीचा चाहिए या मुझे फलों का बाग बगीचा चाहिए या मुझे रिक्रिएशनल मनोरंजन के लिए बाग बगीचा चाहिए, वो भी आपको तय करना पड़ता है। और फिर एक चीज और आती है कि आपको जो गमले काम में लेने हैं, या आपको प्लांटर बनाने, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। गमले ऐसे होने चाहिए जो वजन कम हो उसमें, ऐसा नहीं कि आपने वहां पे सीमेंट कंक्रीट वाले पॉट्स रख दिए जिससे वजन वैसे ही बढ़ गया, या आपने ज्यादा मिट्टी का प्रयोग किया, मिट्टी भारी होती है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा किस प्रकार का मीडिया यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप मिट्टी यूज कर रहे हैं तो वजन ज्यादा हो गया, उसकी जगह आपको दूसरे पर्याय भी तलाशने होंगे, जैसे कोकोपिट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, परलाइट हो गया, इस टाइप की चीजों पे भी आपको जाना पड़ेगा। फिर एक चीज और है कि आपको पॉट्स पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कई पॉट्स ऐसे होते हैं जैसे आपके घर में पड़े हुए हैं, जैसे आपका 200 लीटर का ड्रम पड़ा है या 100 लीटर का ड्रम पड़ा है या 50 लीटर का ड्रम पड़ा है, उसको कट करके उसके अंदर भी आप फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, तो ये चीजों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपने यहाँ ये तय कर लेना जरूरी है कि हमें करना क्या है
1: जी,
2: उसके बाद ही आप आगे बढ़े।
1: जी, चुनौतियाँ की बात आप सैनी साहब कर रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ बताया, कुछ का समाधान भी आप बताया। एक बात जो हमारे मन में अटक गई और शायद श्रोता भी इस पर ध्यान चाह रहा वेला कि आप जानकारी दियो, आप कहा कि आपकी छत कत्तो वजन उठा सके है, बीकू पतो कहीं करा ला
2: आप। देखिए, आप जब टेरेस गार्डनिंग करने जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी आप करेंगे वो वजन छत पे ही बढ़ने वाला है।
1: बिल्कुल,
2: तो वो छत पे जो वजन बढ़ने वाला है वो किस चीज से बढ़ेगा, आप जो पॉट यूज कर रहे हैं या प्लांटर बना रहे हैं या फिर उसके ऊपर जो परगोला बना रहे हैं, तो वह वजन वो बढ़ना ही है उस पे। तो उसको लोड बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं हम लोग टेक्निकली। तो वो कैसे चेक होगी, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, उससे संपर्क किया जाता है और वो आके आपको बताता है ये आपकी छत इतना वजन झेल सकती है
1: जी।
2: दूसरा क्या है कि आपको जितने भी उसके क्रैक्स हैं उसमें जो दरारें हैं वगैरह उसको भी आपको ठीक करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई उसमें कोई वाटरप्रूफिंग की आवश्यकता तो है, क्योंकि जब आप उसमें पौधे लगाते हैं तो उसमें क्या है आपका पानी का रिसाव भी होगा, और ऐसा ना हो कि आपने पौधे लगाए और सीलन से आप ग्रसित हो गए, एक साइड आप कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं उल्टा आपको दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ गया। इसमें आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के आने से आपको दो फायदे और हो जाते हैं कि आपको एक तो लोड बियरिंग का पता लग जाता है, दूसरा क्या होता है कि आपका कॉलम कहाँ पे है, आपके जो बीम है कहाँ से जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे है, तो वो सब चीजें आपको काम आती है जब दूसरे आप प्लांटर्स बनाते हैं, तो उस चीजों में आपका सहयोग होता है, उससे जानकारी हासिल होती है आपको।
1: जी सैनी साहब, आप बोलिया कि जब पानी की व्यवस्था कोनी हो तो आप तकनीका पर जावा हाँ, ड्रिप लगावा हाँ, और आजकल तो ऑटोमेशन भी हो गयो है, यानी कि आप समय तय कर दो पानी अपने आप ही लग जावे, लो थाने बार बार याद दिला की जरूरत को नहीं पड़ेगी, पौधा ने पानी देना है, मोबाइल से भी सेटिंग हो जावे है ना?
2: और आप कहीं भी बैठे हैं आप चालू करके दे सकते हैं
1: कि घर में आप नहीं भी हो तो भी आपका जो पौधा है तिसाया को नहीं रहे। तकनीक की बात आपा कर रहे हैं, सिंचाई की बात आपा कर रहे हैं, प्लांटर्स की बात आपा कर रहे हैं, प्लांटर्स यानी गमला देसी भाषा में आपा कहवा, अगर गमला और जो बैग आवे है
2: ग्रो बैग्स
1: जाने आपा कह वहाँ, अगर बैग है तो बाकी तुलना में कौन सो ज्यादा सही रहे वजन के हिसाब?
2: ग्रो बैग्स ज्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि इनमें वजन कम होता है
1: जी, और दूसरों ए चाल भी जावे एक दो साल,
2: हाँ आराम से एक दो साल चल जाते हैं। ग्रो बैग्स कर सकते हैं घरेलू लेवल पे अगर आप कर रहे हैं, और अगर आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो आपको प्लांटर्स खुद इन बिल्ट करने पड़ेंगे छत के ऊपर, और उसके लिए क्या है कुछ वाटर प्रूफिंग भी करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको क्या रूट बैरियर्स होते हैं, रूट बैरियर्स एक ऐसा चीज होती है जिसको कि चारों तरफ फिट कर दिया जाता है जिससे कि जो जड़ें हैं वो नुकसान नहीं कर पाती इमारत को
1: जी। तो आप निश्चिंत रहो, सुरक्षित प्रक्रिया है श्रोताओं, और आप जो है आप छत पर भी आप रो बगीचो लगा सको हो। जठे तक साग सब्जियां की बात है, फूलों का पौधा की बात है, तो थोड़ा सो लगा बाड़ो भी निश्चिंत रहे, लेकिन जब फलां का पौधा की बड़ा पेड़ा की बात आप करा हाँ, तो लागे है कि कटे कह तो आंकी बढ़वार को नहीं होवेली के फलत कौन वेलो, और या फिर या आपने जो छते बिना नुकसान पहुंचा सके है, तो एक बार हम बताओ कि की तरीका की भी की पूरी प्रक्रिया हुए है, चाहे वे जड़ा की साफ सफाई वे, चाहे ऊपर जो फल है अपना चोखा आवे, तो कई प्रक्रिया रह वे है।
2: इसमें सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ता है कि आपको कौन कौन से पौधे लगाने हैं। बड़े पौधों में अगर बात करें तो हम अरेका पाम लगा सकते हैं, खजूर के पौधे लगा सकते हैं, खजूर की एक वेरायटी और आती है जिसको फोनिक्स रोबिलिनी कहते हैं, छोटा खजूर जैसा होता है वो, और चंपा लगाई जा सकती है, और कुछ फाइकस की प्रजातियां ऐसी हैं जिनको लगा सकते हैं, ये देखने में सुंदर होती है, पानी की इनको जरूरत कम होती है, तो ये चीजों का आपको करना है। फूल वाले पौधे हैं जैसे बोगनवेल लगा सकते हैं, या आप हिबिस्कस जो बोलते हैं अपन वो लगा सकते हैं, एक्जोरा जो है वो लगा सकते हैं, मुराया बोलते हैं या कामिनी बोलते हैं उसको भी आप लगा सकते हैं, ये सुगंधित फूल भी हैं और खूबसूरत फूल आते हैं इस पे, तो लोग आकर्षित भी होते हैं इसको, और कम मेंटेनेंस वाले पौधे भी इस पे लगाए जा सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट हो गया, जीजी प्लांट हो गया, ड्रेसेना हो गया, एग्लोनिमा हो गई, ये चीजें हैं। कुछ आप हैंगिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं क्योंकि छत छोटी है, तो हम जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उस पे पेड़ पौधे लगे, तो कुछ हैंगिंग पॉट्स लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट्स में क्या कर सकते हैं आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, स्पाइडर स्पाइडर प्लांट्स लगा सकते हैं, फिलोडेंड्रोन्स लगा सकते हैं, ट्रेडेंशिया लगा सकते हैं। तो ये चीजें हैं आपको हेल्प करती है लटकने वाले गमलों में लगा के। और दूसरा इसके अलावा जो वर्टिकल गार्डनिंग जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि अब वो स्टेज आ गई कि अब अपने पास छत भी नहीं रही
1: जी, तो आप उभो बाग लगा लिया साहब।
2: तो अब ये उभा बाग वाली बात हो गई। तो इसमें क्या होता है कि खड़ी जो आपकी दीवारें हैं उस पर आप फ्रेम फिट करते हैं, फ्रेम के अंदर आपके पैनल्स फिट होते हैं, पैनल्स के अंदर कुछ

0: मीडिया डाला जाता है। मीडिया का मतलब होता है ऐसा पॉटिंग मिक्सचर जिसपे कि पौधों को लगाया जा सके, उगाया जा सके और जिनमें वजन भी कम हो। तो उसमें कोकोपेट, परलाइट, वर्मिकलाइट इसका मिक्सचर बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट मिलाया जाता है और इसमें ऐसा सिस्टम लगाया जाता है जैसे बूंद बूंद सिंचाई तंत्र का, और उसमें ऑटोमेशन और सोने पे सुहागा, आप कहीं पे भी बैठे आप उसको चालू कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इस डर से टेरेस गार्डन नहीं करते थे पूर्व में कि अगर हम दो दिन के लिए या चार दिन के लिए बाहर चले गए तो हमारे पेड़ पौधों का क्या होगा, कौन इनका ख्याल रखेगा, क्योंकि पेड़ पौधों से लगाव लोगों का ऐसा है बच्चों जैसा है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: वो अब वो डर भी खत्म हो गया क्योंकि ऑटोमेशन हो गया
1: जी। अच्छा, पानी की व्यवस्था तो चलो ऑटोमेटिक हो जावे है।
0: हाँ जी।
1: अगर टेरेस गार्डन की बात करें, छत है, खुली छत है, आप गार्डन लगा लिया, आप धूप आवे है, जब बरसात बहुत तेज आ जावे है और आप घरा को नहीं, की तरीका सो आपका पौधा जो है वे बच सके है तेज धूप और बरसात सो, एक ही भी कोई सुविधा है, कोई छांव आपा कर सका?
0: हाँ जी, जैसे अपने यहाँ पे जयपुर है या राजस्थान है, सबसे ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है और मैं तो कहूंगा कि प्रकाश की तीव्रता को देखें तो 120,000 लक्स यहाँ पे गर्मियों में प्रकाश की तीव्रता रहती है और जो पौधे आमतौर पे होते हैं उनको 50 से 55,000 लक्स के आसपास की जरूरत होती है, यानी 50% कम की। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि ऊपर एक शेड नेट लगाते हैं जो कि 50% वाला होता है, 50% छाया देने वाला। तो इसका मतलब क्या है, सूर्य की जो तीव्रता आ रही है, प्रकाश की तीव्रता आ रही है, उसको 50% वो कम कर देता है। तो आमतौर पर जो लगाया जाता है वो 50% वाला लगाया जाता है
1: जो
0: हरे रंग का होता है। तो ये एक चीज है। और दूसरा क्या है, बात रही तेज बारिश का, तो कई बार क्या होता है लोग अपने छत के ऊपर बगीचा लगाते तो उनके मन में ये होता है कि मैं यहाँ पे लॉन भी लगाऊं, घास भी लगाऊं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब मैं तो आर्टिफिशियल से खुश हो जाऊंगा, पर कुछ लोग होते हैं नहीं, मुझे तो आर्टिफिशियल चाहिए नहीं, मुझे तो ओरिजिनल चाहिए, जो जमीन पे घास लगती है वही लगानी है छत पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको एक छत तय करनी पड़ती है कहाँ पे आपको लगाना है, उसके बाद में उसका वाटर प्रूफिंग करना है, कोई दरार वगैरह है उसको बंद करना है, और उसके बाद में उसके ऊपर ड्रेन सेल्स आते हैं, प्लास्टिक की एक ट्रे टाइप की आती है, उसको बिछाया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है और एक पूरी जाल बिछा दिया जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा आता है जिसको जियो मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको कपड़े को फैलाया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर मीडिया डाला जाता है, मीडिया मतलब जिसमें कि आपको घास को उगाना है। तो वो उसमें मिट्टी भी होती है, वर्मिकुलाइट होता है, परलाइट होता है, कोकोपिट होता है, ये सब चीज मिला के मिश्रण तैयार किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट भी दिया जाता है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके, और उसके बाद में जो कार्पेट ग्रास होती है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको बिछा दिया जाता है, और उसके बाद में उसको पानी दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा पानी लगता है वो ड्रेन सेल के जरिए नीचे निकल जाता है और ड्रेन होकर चला जाता है। तो ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखा जाता है टेरेस गार्डनिंग में, तेज बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता
1: जी। अच्छा, बात करा आपा कि टेरेस गार्डन लगा लिया,
0: हाँ जी,
1: और प्रक्रिया भी समझ लिया आपा, अगर सब्जियां की बात करा,
0: हाँ जी,
1: सब्जी लगानी है, कई कई प्रक्रिया रहवे है और कई सावधानी आपा ने रखनी चाहिए जी जब आपा टेरेस गार्डन में सब्जी लगावा।
0: देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सीजन की कौन सी सब्जियां होती हैं। तो आप देख लीजिए, जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप बोलेंगे गर्मियों की सब्जियां, तो उसमें आप भिंडी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, घिया लगा सकते हैं, गवार, टिंडा, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, तुरई, तर ककड़ी, कोला, खरबूजा, तरबूज, लोबिया, पालक, धनिया, चौलाई, पपीता, पपीता भी छत पे लगाया जा सकता है टेरेस गार्डन पे। ऐसे ही बरसाती का आपको निकाल लेना है, बरसाती सीजन यानी कि मई से जुलाई का जो है उसके लिए आपको कैलेंडर रेडी रखना है। ऐसे ही आपको सर्दियों में जो जाड़े की सब्जियां होती है अगस्त से लेकर जनवरी के बीच में, उसका कैलेंडर आपको रेडी रखना है, पहला काम तो ये। दूसरा, बीज कहाँ उपलब्ध होगा वो आपको जानकारी होनी चाहिए, कब लगाना है वो चार्ट बताएगा आपको, और किस में लगाना है। कई बार क्या होता है कि मुझे लगाना है पालक और मैंने जो गमले गहरे होते हैं उसमें लगा दिया, क्योंकि पालक की जड़ ज्यादा जाती नहीं है तो मुझे कम गहराई वाले चीजों का इस्तेमाल करना है, जैसे धनिया लगाना है, पुदीना लगाना है, उसको कम गहराई वाले। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से कंटेनर में लगाई जाएगी या कौन से पॉट में लगाई जाएगी। दूसरा, घर में कई बार क्या होता है, कई चीजें भंगार के रूप में पड़ी होती है, उसका सदुपयोग हो सकता है। जैसे कुछ डब्बे हैं जो 50 लीटर का कोई कैन आपके पास खाली हो गया, आपने उसमें कुछ लगा लिया, कोई 100 लीटर का अगर आपके पास कैन है, ड्रम है, तो उसके अंदर आप फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें होती है ड्रेनेज। अगर आपने जो भी कंटेनर जिसमें आप सब्जी लगा रहे हैं उसमें अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखा तो आपकी सब्जियां अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी और हो सकता है उसमें रोग ज्यादा आए और मर भी जाए। कि एक चीज और अपने को विशेष ध्यान रखना है, वो है कि अपने को ध्यान रखना है कि सर्दी ज्यादा हो रही है गर्मी ज्यादा हो रही है। सर्दी ज्यादा हो रही है तो उसमें क्या करना है, अपने को ऊपर जो नेट लगा रखी है उस नेट को अपने को पाला पड़ेगा, तो उस समय उसको फैला देना है, तो पाले के प्रकोप से वो बचाएगी, और दिन में उसको हटा लेनी है। तो उसको स्लाइडिंग भी बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा कर सकते हो। और गर्मियों में क्या है कि अपने को पूरे दिन गर्मी नहीं होती है, सुबह का जो समय कम गर्म होता है, दोपहर का जो पीरियड होता है ज्यादा गर्मी होती है, फिर शाम को कम हो जाती है। तो जो टॉप पीरियड है जब गर्मी ज्यादा पड़ती है 11 से लेकर 2 बजे तक या 3 बजे तक, उस समय आप उसको फैला दें, बाद में इकट्ठा कर दें। तो ये नेट भी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसमें आप चाहो तो ऊपर फॉगर्स भी लगा सकते हैं, छोटा ये सिस्टम है। आजकल के हर चीज में जितना आप ऑटोमाइजेशन पे जाएंगे, जितना आप टूल्स को यूज करेंगे, आपकी मेहनत कम हो जाती है।

0: साहब जाना कि जो टेरिस गार्डन है,
1: हाँ जी,
0: अगर इन्हें कोई लगावे है तो कई लाभ इसमें होवे है?
1: देखिए, सबसे बड़ा लाभ इससे ये है कि आपको हमेशा प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता है
0: जी।
1: दूसरा, जो कहें तो आपको शुद्ध और विष रहित फल और सब्जियां खाने को मिलती है। आप उगाएंगे तो आप खाएंगे, खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज बहुत सारी सब्जियां हम सेवन करते हैं जो कि ऐसी जगह से आ रही है जिसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड है और उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है और असाध्य बीमारियां जैसे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो रही हैं, तो उससे अब बचाव हो सकता है। और भाग दौड़ की जिंदगी है, हम भाग रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आदमी भागता रहता है, समय है नहीं, अपने लिए भी नहीं है
0: जी।
1: तो कहने का मतलब ऐसे में क्या होता है कि आदमी तनाव से ग्रसित रहता है। पर आपने रूफटॉप गार्डन बना रखा है या आपने सब्जियां लगा रखी हैं छत के ऊपर, बगीचा लगा रखा है, तो कुछ समय जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन फील होता है, आप स्ट्रेस आपका दूर होता है। फिर महिलाएं की बात करूं तो गृहणियों को कभी कभी क्या होता है, सब्जियों के लिए धनिया चाहिए, ताजा धनिया चाहिए, मिर्ची चाहिए, पुदीना चाहिए, तो उसको अगर आप बाजार से लाओ कितना भी लाओ लेकिन वो ताजा नहीं मिलेगा। लेकिन एक वही चीज अगर आप अपनी छत से तोड़ के अगर सब्जी बना रहे हैं उसमें डाल रहे हैं तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। कहा यह जाता है कि लोगों के अगर दिल में पहुंचना है तो उसका रास्ता
0: पेट से हो जावे।
1: तो ये चीजें हैं। बच्चों को इससे फायदा ये होता है कि बच्चे जो है आज पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन उसको व्यवहारिक तौर पे सीखने का मौका जब वो प्रकृति के बीच में रहते हैं, पौधों से देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, मटर का पौधा कैसा होता है, टमाटर का पौधा कैसा होता है, अगर मूंगफली आपने लगाई तो मूंगफली का फूल ऊपर आता है लेकिन मूंगफली लगती जमीन में कैसे, तो पैगिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें जो तकनीक है उनको समझने को मिलती है। और एक चीज और है जो अर्बन हॉट आइलैंड इफेक्ट है उससे आपको काफी हद तक निजात मिलती है। आज क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंक्रीट के जंगल तैयार हो गए हैं, पेड़ काट दिए हमने और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, उससे क्या हो गया कि आपकी बिल्डिंग का जो टेम्परेचर है वो बाहर के आसपास के टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, तो इसमें आपको इससे भी निजात मिलती है। ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट आ गया है, ग्रीन आप ग्रीनरी जितना करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है, एसी कम चलाने पड़ेंगे, कूलर कम चलाना पड़ेगा, बिजली बिल ना के बराबर आएगा या कम आएगा, तो ये सब चीजों का आपको फायदा मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक अच्छा शौक है, जिंदगी में आदमी को शौक पालना चाहिए, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के पास कोई सी प्रकाश का शौक नहीं है तो उसकी जिंदगी जो है एक तरह से नीरस हो जाती है।
0: अगर क्यों भी करवाने नहीं मिल रहे है तो छत अपनी है, आप पौधा लगावो शुरू करो। चलता चलता एक लाइन में महाकाश होता उन्हें कहीं के पूछा
1: छत चाहे छोटी हो या बड़ी, टेरिस गार्डन जरूर लगाएं, टेरिस गार्डन करें, खुशहाली लाएं जीवन में।
0: बिल्कुल, और जैसे सैनी साहब बताया मन तो लिखवा को शौक है, आप सब जानो ही हो कि छत छोटी हुए या बड़ी सदा रहे हरी। तो ई बात के साथ ही आप वहाँ के कार्यक्रम में आया राजेश कुमार सैनी, उद्यान सलाहकार, बहुत चौकी सलाह आप माने दिया, इकले घने मानू, धन्यवाद सा। और देखो बहुत बढ़िया जानकारी आज तो मैंने यहाँ लागू कि मतलब जब मैं सैनी साहब से डॉक्टर साहब से बात कर रही थी कि अगर जगह नहीं भी हो और इच्छा शक्ति वे ना तो पेड़ पौधा तो आप लगा सका था। और जब आने अति चौकी जानकारी आपने मिली गई आंसू तो मैंने लगे मैं भी बहुत चौकी जानकारी दिलाई हूँ, चौका चौका सवाल पूछी हूँ। तो
2: हाँ चंचल बहन, गणी चौकी जानकारी ते भी डॉक्टर साहब सु विशेषज्ञ सु महासभ तक और आपना सगड़ा हेताड़ु श्रोतागण तक पुगाया, इके लिए था को और आपना विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार सैनी जी को घणो मानसू, धन्यवाद छे सा। लेकिन चंचल बहन ते तो जानो ही हो सा कि आपने आकाशवाणी री रीति कोनी की सा कि आपा करो करो धन्यवाद देवा, तो चाला सगड़ा रलमिल सुना और सुनावा एक चोखो सो लोकगीत।
0: बिल्कुल सा।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: तो देखो, गीत की स्वर लहरियां के सागे सागे आपा भी बयार भयो समय भी। और अब कार्यक्रम में बस अत्रो ही समय बचो है कि आपा कह दें कि इस कार्यक्रम में सुनोड़ी बाता ने सुनो ही नहीं गुणों भी, और अब अगला कार्यक्रम की तैयारी करवा के लिए जानो वेलो। तो करनो वेलो आपा ने अपना श्रोतावासु
4: राम राम सा।
5: थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
0: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इसका प्रसारण हमने आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओं, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ। लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं हमारे लिए शीतल छाया हैं। वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें। एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
3: हेलो चिल्ड्रन।
4: हेलो मैम।
5: हेलो मैम।
3: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन मैम।
5: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
3: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
4: यस मैम।
3: ऑलराइट, यू ऑल नो दैट pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, pets are so lovely.
3: Right, Soham.
6: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
6: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
7: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
8: Ma'am, when I come home,

0: Now children, tell me, what did you learn from this poem?
1: Ma'am, all colors are beautiful.
0: Oh yes, now let's have a little game. I'll name the bird and you will tell the color of that bird. Okay?
2: Okay, ma'am.
0: Good.
3: Yes, ma'am.
0: Good. The bird is parrot. Tell me the color.
2: Green.
0: Now, Soham will tell.
4: Green.
2: Yes, it is green.
4: Yes.
0: Right. Now, listen to the sound of parrot. The next bird is sparrow. Now, tell me the color. Who will tell?
2: Me.
0: Navya, Vanya, Soham.
3: Me.
0: Me. Lavish.
5: Ma'am, brown.
0: You're right. Sparrow has mostly three colors. Brown, white and
2: black.
0: Right.
1: Crow is also black, ma'am.
0: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds.
2: Ah! Ah!
0: Now you all know about the sounds of birds.
2: Great. Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem?
2: Yes, ma'am.
3: We loved it.
0: Okay. And the song and the little game of birds?
2: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
6: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं।
7: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी? तो सुनो।
8: बाबू, स्वामी विवेकानंद आए हैं, उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
9: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
8: अच्छा बाबू।
9: और सुन
8: जी,
9: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी। हैं? भगिनी निवेदिता
8: हैं?
9: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
8: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
9: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
8: अच्छा?
9: हाँ, बंगला बोल लेती है।
8: ओ।
9: बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
8: अच्छा?
9: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
8: वो तो ठीक है, पर बाबू।
9: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है। जा, भाग यहाँ से। पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
10: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू? उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
9: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
11: धन्यवाद बोस बाबू।
3: किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
9: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
3: धन्यवाद।
10: अब बताइए बोस बाबू
9: जी,
10: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
9: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
3: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
9: नुकसान तो है ही सिस्टर। पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
3: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू? जब परिवार की बहु बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
9: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
3: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
10: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
3: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
10: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू
9: जी,
10: यही बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
9: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस विषय
10: में? वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
9: चलिए, तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर ली है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
3: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं, शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
9: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
10: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
7: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
4: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
2: गुड मॉर्निंग दीदी।
3: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
5: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश, ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
3: फिर तुमने क्या कहा?
5: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
11: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
5: हाँ दीदी।
11: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
12: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
5: दीदी ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
11: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़े हैं, भीतर आइए ना। जाते चारू माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
12: अच्छा दीदी।
11: नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े ही थोड़ी लौट जाने देंगे।
5: दीदी ये लीजिए आसन।
11: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा।
13: किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा।
11: क्या कहती है माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता।
13: क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
11: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
13: हाँ सो तो है।
11: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
13: तबीयत तो ठीक है।
11: अच्छा नीम दीदी अब मैं चलूंगी,
13: कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
11: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
7: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुईं।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कुछ एल्बम सॉन्ग।

0: न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे।
1: आ निकलाऊं पल दो पल के लिए, आ निकलाऊं पल दो पल के लिए,
0: जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के

0: फूल मेयार तक नहीं पहुंचा, फूल मेयार तक नहीं पहुंचा, दामने यार तक नहीं पहुंचा, हो गया वो कफस से तो आजाद, फिर भी गुलजार तक नहीं पहुंचा।
1: फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना,
0: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर से सवाली।

किस्मत सियाह थी। शहनाइयां उसे भी बुलाती रही मगर, शहनाइयां उसे भी बुलाती रही मगर, हर मोड़ पर जहेज की कुर्बान गाह थी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एल्बम सॉन्ग FM एंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम घूमर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम घूमर। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर

0: चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं और उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
4: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली एमडीआर लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए एमडीआर की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26.86 अरब डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
7: वी नीड टू डेवलप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर।
8: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
7: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
9: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
10: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
11: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गजलें। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज कलाकार है गुलाम अली।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम FM एंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आइए सुनते हैं मंजिल मंजिल फिल्म का गाना। आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत RD बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में डर फिल्म का गाना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, संगीत शिव हरी का है।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का गाना। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आनंद मिलिन का है।

0: गया।
1: इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जो विज्ञापनों की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आया और जिसके गाने सुनना आपको

जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे गीतकार की जिसके शब्दों में लालित्य है, कविता है और है जज्बात का समंदर। मैं

प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने पढ़ने का शौक रहा और आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के एक संस्थान से एमबीए किया। आगे चलकर वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगे। लिखने का शौक तब भी जारी रहा और उनकी कॉपीराइटिंग में लिखने का वो शौक झलकता रहा। तब तक प्रसून जोशी की किताब भी छप चुकी थी। इस किताब का नाम था मैं और वो। जब ये किताब छपकर आई तब प्रसून की उम्र केवल 17 साल थी। कई बरस तक प्रसून एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने गायिका शुभा मुद्गल के लिए कुछ एल्बम के गीत भी लिखे। फिल्मों में उनका पहला कदम था फिल्म लज्जा के जरिए। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म के कुछ गाने प्रसून जोशी ने लिखे थे। इसके बाद उन्हें यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की फिल्म हम तुम में गाने लिखने का मौका मिला। हम तुम के गाने बहुत चले।

इसके बाद तो जैसे मुंबई फिल्म जगत में प्रसून जोशी के कदम जम गए। उन्होंने फिल्म फना के लिए भी गाने लिखे और इस फिल्म के सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। प्रसून जोशी की सबसे बड़ी खासियत है वो जिंदगी के बहुत मामूली से जज्बात को पकड़ते हैं और अपने शब्दों के जरिए उसे एक खास रंग दे देते हैं। उनके गीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म फना का ये देशभक्ति गीत सुनिए। ये उस दौर का गाना है जबकि देशभक्ति के बहुत नगमे नहीं आ रहे थे। नई फिल्मों में ऐसे गानों की जगह ही कहां बनती है, पर प्रसून जोशी ने अपनी कलम के जादू से इस गाने को अनमोल बना दिया।

ऋषि। रंग दे बसंती अपनी तरह की एक अनमोल फिल्म थी, सबसे अलग, और इस फिल्म का असर भी बड़ा गहरा था। जरा इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगा।

आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर जब बनी तो इसके गाने लिखने की जिम्मेदारी मिली प्रसून जोशी को, और इस फिल्म के लिए प्रसून जोशी ने कुछ अलग ही गीतकारी की।

इस फिल्म के इस गाने के लिए प्रसून जोशी को मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको बता दें कि प्रसून जोशी कुल 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तारे जमीन पर के अलावा फिल्म चिटगांव के एक गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। बोलो।

0: जुलाई 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद और गीत प्रसून जोशी ने लिखे थे। इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो फिल्म का शीर्षक गीत तो है ही, साथ ही इस गाने में प्रसून जोशी ने फिल्म के पूरे मर्म को समेट दिया है।
1: अरे शक्ति मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे

इस फिल्म में ये मौज मस्ती भरा गाना भी प्रसून जोशी ने लिखा, जो शायद फौजी बैरकों में मौज मस्ती का सबब बन चुका है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी के कुछ अनमोल नगमे। साल 2009 में आई फिल्म लंदन ड्रीम्स का ये गाना जो एक प्रयोग था, और ये प्रयोग बड़ा कामयाब रहा।

जैसा कि हमने आपको बताया, प्रसून जोशी ने गायिका शुभा मुद्गल के कुछ एल्बम्स के लिए नगमे भी लिखे। आपके सावन एल्बम का ये शीर्षक गीत सुनिए।

0: लगता है।
1: प्रसून जोशी का रचना कर्म अभी भी जारी है और उनके चाहने वाले उनसे नित नए नगमों की उम्मीद करते रहते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार प्रसून जोशी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। हमारी आज की सभा अब समाप्त होती है। कल सुबह 8:51 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।